सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। बाबा आमटे ने कहा है, खुशी एक सतत रचनात्मक गतिविधि है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है वंदना। सबसे पहले नमन अपनी मातृभूमि को, जिसके गौरवशाली नागरिक होने का सौभाग्य हम आजीवन पाते हैं। इसकी सनातन संस्कृति के हम वाहक हैं, पोषक हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक देशभक्ति पूर्ण रचना समूह स्वर में। हमारे आराध्य पर हमारा अटूट विश्वास ही हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से उबरने में सहायक होता है। अपने जीवन की नैया की पतवार उस परम शक्ति को सौंप देना ही भक्ति का आदर्श है।

अभी आप सुन रहे थे मीराबाई रचित ये भजन अनूप जलोटा के स्वर में। पूजा पाठ के भव्य तरीकों से यदि हम अपने ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ये हमारी भूल है, क्योंकि हमारे पौराणिक ग्रंथ ऐसे कई अनन्य भक्तों के उदाहरण से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी निश्चल भक्ति भाव से अपने प्रभु को पाया। माता शबरी, नाविक केवट, भक्त प्रहलाद के निश्चल हृदय केवल उनके प्रभु से ही ओतप्रोत थे।

निर्दोष की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में। प्रभु नाम कीर्तन, कथा श्रवण और नाम स्मरण भक्ति के माध्यम हैं। इनमें उनका स्मरण ही हमें उनके सर्वाधिक निकट अनुभव कराता है।

0: भरत आचार्य का लिखा ये भजन अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास के स्वर में। इसके साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख डॉक्टर महमूद शेख का, वाचक स्वर दिनेश नामदेव।
1: दुनिया में इतने धनाढ्य पहले कभी नहीं हुए जितने की आज हैं। अमेरिका और यूरोप को दौलत की खान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बाद भी अक्सर ये सुनने में आता है कि वहां भी उनकी आमदनी कम हो रही है। आज पूरी दुनिया आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। बात यह है कि भौतिकवादी समाज में इंसान के पास कितनी ही दौलत एकत्रित क्यों ना हो जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यही हाल उस व्यक्ति का है जो दिन रात दौलत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। सब कुछ होते हुए भी उसकी भूख नहीं मिटती। देखा जाए तो एक आदमी की वास्तविक जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित है, परंतु वैभवशाली जीवन की चाहत में वो अपना जीवन भी मुश्किल में डाल देता है। वो यह भी नहीं सोचता कि एक दिन मृत्यु उसका सारा वैभव समाप्त कर देगी और वो एक साधारण मनुष्य की तरह दुनिया से विदा हो जाएगा। वो दौलत जो उसने जमा की है उसके जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकती। एक सच्ची घटना इस प्रकार है। एक किसान ने अपनी पूरी जमीन एक बिल्डर को 2 करोड़ रुपयों में बेच दी। इतनी बड़ी रकम देखकर वो इतना खुश हुआ कि रात बिस्तर में ऐसा सोया कि दूसरे दिन का सूरज देखना भी उसे नसीब ना हुआ। और वो सारी दौलत उसके निकम्मे, अनपढ़ और आवारा मिजाज बेटे के कब्जे में चली गई। आम तौर पर सभी दौलतमंद व्यक्तियों का हाल यही है कि वो अपना सारा जीवन दौलत जमा करने में लगा देते हैं और एक दिन खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिसका सारा लाभ परिवार के अन्य सदस्यों को मिलता है। एक व्यक्ति के जीवन में कितनी दौलत की आवश्यकता होती है, इस प्रश्न पर कोई विचार ही नहीं करता। दौलत जमा करने का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का भी कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। कई धनवान तो ऐसे हैं जो अपनी शारीरिक बीमारियों के कारण पर्याप्त भोजन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक मजदूर और किसान को ये बीमारियां नहीं होती। इन बीमारियों का कारण आज आधुनिक जीवन शैली है, जिसने जन सामान्य के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। दौलत के पीछे भागती दौड़ती दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि एक दिन धन का महत्व अपने आप समाप्त हो जाता है। हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी से इंसान का पेट नहीं भरता। दौलत से आलीशान घर, मकान बनाए जा सकते हैं, उम्दा और महंगी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, परंतु जीवन की सुख शांति को खरीदना बहुत मुश्किल है। दौलत से सम्मान खरीदा जा सकता है, परंतु ज्ञान नहीं। शरीर को सुंदर बनाया जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। घर का अंधेरा दूर किया जा सकता है, परंतु मन का अंधेरा दौलत से दूर नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि लोग दौलत का भंडारण कर खुशी महसूस करते हैं, बैंक बैलेंस को देखकर हर्षित होते हैं, वे अपनी इच्छानुसार जो चाहते हैं बाजार से खरीद सकते हैं और ये सोचकर खुश होते हैं कि उनके पास बंगला है, कार है। दुनिया की बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत कम लोगों के पास होती हैं। वो अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग उनके वस्तु प्रेम और वैभवशाली जीवन से प्रभावित भी होते हैं और उन्हें बड़ा आदमी समझकर उनका आदर सम्मान भी करते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो उस व्यक्ति के चरित्र में ऐसी कोई खास बात नहीं होती जो लोगों को प्रभावित कर सके। वो अपनी व्यक्तिगत कमजोरी को दौलत की चमक दमक में छुपाकर लोगों को इस सच्चाई पर विचार करने का अवसर ही नहीं देता कि वो अंदर से खाली है। बाजार में बिकने वाली बहुत सी वस्तुएं केवल अपने खूबसूरत लेबल के कारण ही बिक जाती हैं। धनवान अपने सुंदर आवरण से लोगों को प्रभावित करता है, परंतु सुंदरता क्या उसके आचरण में भी है? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी धन संपत्ति का क्या लाभ जो मनुष्य का चरित्र निर्माण भी ना कर सके।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख डॉक्टर महमूद शेख का, वाचक स्वर दिनेश नामदेव का। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर सुरेश वाडेकर का।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर सुरेश वाटेकर का। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि सामिकी में लीजिए सुनिए गर्मी में गहरी जुताई, इस विषय पर जानकारी।
1: किसान भैयारो, आज हम आपोरों के लाने गर्मी की ऋतु में गहरी जुताई के लाने सलाह दे वो चाहत हैं। तो गर्मी के मौसम में प्राय जो देखो जात है कि सभी खेत खाली हो जात हैं। मार्च अप्रैल में ज्यादातर रबी फसलों की कटाई गहाई हो जात है, तो जो एक उम्दा समय होत है जब अपन अपने खेतों की मिट्टी पलटवे वाले हर से गहरी जुताई कर सकत है। गर्मी में जब सूरज की तेज धूप जमीन खो लगत है तो प्यूपा भूमि की ऊपरी सतह पे आ जात है और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक खरपतवारों के बीज सोई ऊपर आवे से सूखो नष्ट हो जाते हैं। गर्मी में गहरी जुताई करबे से बहुत से लाभ हैं, जिनको हम आपके लाने बतावो चाहत हैं। तो देखा थे कि क्यों बननी फसलों की हानि होवे वारे या पहुंचावे वारे जिन कीड़ा मकूड़ा होते हैं, उनके अंडा होते हैं, लार्वा प्यूपा जिन खेतों की दरारों में छिपे भाई रहते हैं, गहरी जुताई करबे से भूमि की ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और गर्मी की जिन तेज धूप है ऊ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यही प्रकार से भैया भूमि जनित जिन कवक हैं, माने जिनको अपन फंगस कह सकते हैं, उनके जो रोगाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। आगामी खरीफ फसलों में पौध संरक्षण पे होबे वारो जो व्यय है वो ऐसो करबे से कम लगत है। हानिकारक खरपतवारों के नियंत्रण के लाने सोई आसानी अपन को हो जात है। गहरी जुताई करबे से बहुत से एक वर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार जैसे मोथा, दूब, कांस, झरबेरी और गाजर घास, बेशरम खरपतवारों के जमीन में काफी गहराई तक जात हैं जिनकी जड़ें, तो गहरी जुताई करबे से वे सब ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप से सूखो नष्ट हो जाते हैं। यही तरह से भैया निंदाई को खर्चा सोई अपनों कम हो जाते हैं जब अपन पहलों से इन चीजों को नियंत्रण कर लेते हैं। भूमि संरक्षण और जल संरक्षण में सोई अपन को सहायता मिलत है। गर्मी की गहरी जुताई करबे से मृदा की जल अवशोषण करबे की जो क्षमता होत है वह बढ़ जात है। वर्षा को जल मिट्टी की गहराई तक ज्यादा समय तक प्राप्त होत रहते है। अक्सर अपन जो देखत है कि लगातार कई वर्षों तक किसान एक निश्चित गहराई, माने कहो चाहिए कि 4 से 6 इंच तक गहराई पे एक कड़ी परत निर्मित हो जाते है, बन जाते है। सो ई कड़ी परत के कारण भैया पौधों की जड़ों को सही रूप से विकास नहीं हो पाते आए। गहरी जुताई करबे से भूमि में जल को कैपिलरी मूवमेंट सोई बढ़ जात है, इसे भूमि को जल स्तर बढ़ जात है। भूमि की उर्वरा शक्ति में सोई सुधार होते है। आपसे बताएं कि वातावरण में या फिर वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होते है जो विभिन्न रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप जाई गैस वर्षा के जल में घुल जात है और पहली वर्षा को जल मृदा के कणों द्वारा सोख लो जात है। सो ई कारण से भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होत है। गहरी जुताई से मृदा में गहराई तक वायु संचार बढ़वे से और सूर्य को प्रकाश पड़वे से मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवी जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जात है। ई कारण से उर्वरा शक्ति में सोई बढ़ोतरी होत है। मृदा क्षरण सोई कम होते है, इको जो सोई फायदा है के ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करबे से मृदा की जल सोखबे की क्षमता बढ़न लगत है और एक बढ़वे से खेत में जल प्रवाह की गति में कमी आउत है। इसे भूमि में स्थित जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को सोई बहाव नहीं हो पाती आए, वे रुके रहते हैं। फसलों के अवशेष माने जिनको अपन डंठल कहते हैं उनको सोई उचित प्रबंधन गहरी जुताई से हो जाते हैं। मिट्टी

0: में पलटवे से दब जात हैं और वर्षा काल में मिट्टी में अच्छी तरह से विघटित होक हैं। भूरे रंग को ह्यूमस पदार्थ निर्मित हो जात है जो मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करत है और सूक्ष्म जीवों और पौधों के लाने अनुकूल परिस्थितियां पैदा करत है। भूमि में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होत है जिनके पोषक तत्वों की वृद्धि करवे के संगे संगे मृदा की जल धारण क्षमता में सोई वृद्धि करत है।
1: श्रोता सुन रहे थे कृषि सामिकी। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज की दोनों सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। हमारी दूसरी सभा में आज शाम 5 बजे हम अनुप्रसारित करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण समापन तक। सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण और आज रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे उर्दू कार्यक्रम आईना आज सुबह 9:30 पर और रात्रि 8 बजे सुर्खियों में।

शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक इस श्रृंखला के अंतर्गत कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00 और शाम 6:30 पर लोक संगीत में आज के कलाकार हैं शिवचरण पटेल। सुबह 9:00 लोक रसधार में सुनिए शोभना कश्यप और शिवानी राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आज रात्रि 10:30 पर और सारंगा सुबह 10:20 पर, और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। फाल्टा उपचुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा। गंगा दशहरा पर उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, मुख्यमंत्री चढ़ाएंगे 300 फीट की चुनरी। प्रदेश भर में जल संरक्षण का महाअभियान। और नौतपा के पहले ही दिन 44 जिलों में हीट वेव अलर्ट, 5 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट, 28 मई तक नहीं मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे, जबकि बाकी पुरस्कार दूसरे दौर में दिए जाएंगे। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ श्री मोदी ने कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में कंचनजंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक बताया गया है। इस साल सिक्किम अपने राज्य बनने के 91 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर आज प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़िया और नहरों की सफाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मां शिप्रा को 300 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे। अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 1.91 लाख से ज्यादा जल संरक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं। इस पूरे अभियान के लिए सरकार ने 10,666 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 59% राशि खर्च भी हो चुकी है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 मई यानी आज कर दी है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को पर्याप्त समय देने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं पुनर्मूल्यांकन यानी रीचेकिंग के लिए आवेदन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के 12 दिन बाद कल भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता मोहम्मद ताहिर।
1: भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले रविवार को दिल्ली एम्स की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम किया था। भोपाल एम्स में करीब 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चली थी। उसके बाद अंतिम यात्रा एम्स से शमशान घाट तक निकाली गई थी। गौरतलब है कि 12 मई की रात भोपाल के कटरा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्विशा शर्मा केस को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। ट्विशा के पति समर्थ को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया था, उसके बाद से ही वो 7 दिन की डिमांड पर है। आकाशवाणी भोपाल के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और रोज पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को 55 करोड़ रूपये अलग से जारी किए हैं। इस बार अच्छी खबर में बात नीमच के किसानों की। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का जमीनी असर क्या है, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता दिनेश प्रजापति।
3: नीमच जिले में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। खेतों में लगाए जा रहे सोलर पंप अब किसानों की सिंचाई व्यवस्था को आसान बना रहे हैं। जिले में सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
4: राजेंद्र गोयल कार्यपालन यंत्री उज्जैन ने बताया कि
5: भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को 90% के अनुदान में सोलर पंप की योजना का लाभ मिल रहा है। किसान को मात्र 10% की राशि ही इस योजना के तहत देना होता है।
3: सोलर ऊर्जा से लाभान्वित किसान गोविंद पाटीदार का कहना है,
6: किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, हर समय सोलर अपने को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाता है। फसलों को पानी मिल जाता है तो उस उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को शुरू होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के वैश्विक सम्मेलन में पहुंचे। यहां श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। दूसरी ओर डॉ. यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास बाघ के हमले में फूलबाई की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतका के परिजनों को 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के लंबे संघर्ष और प्रयासों का नतीजा है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का कहना है कि इससे छात्रों, मरीजों और आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 3 दिन चली ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना कल पूरी हुई। इस बार पूरे प्रदेश में 10,742 गिद्ध गिने गए, जो पिछले साल से करीब 1200 ज्यादा हैं। और अब बात मौसम की। आज से नौतपा शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। नौतपा से एक दिन पहले ही खजुराहो और नौगांव में पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का यही हाल बने रहने का अनुमान है। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में कल दो बड़े नतीजे सामने आए। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया, जिसमें कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात देकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल जबलपुर दौरे पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में बच्चों के साथ पौधे लगाए। धार जिले के ग्राम बिंजकुआ में नदी किनारे झाड़ियों में मादा तेंदुआ का शावक मिला है। वन विभाग ने सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर इसे इलाज के लिए भोपाल के वन विहार भेज दिया है। खंडवा के नीरज पटेल ने एशियन अंडर 23 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप के 55 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज आगर मालवा में मोती सागर तालाब के गहरीकरण और सफाई कार्य में भाग लेंगे। बैतूल में गंगा दशमी पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्वालियर में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए आज व्यापक कार्यक्रम होंगे।

इंदौर में बुजुर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज कलेक्ट्रेट में विशेष शिविर लगेगा। शिवपुरी में डाक विभाग आज और कल विशेष महा आधार अभियान चलाएगा। डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में ही रैन बसेरा बनाया जाएगा। बालाघाट के मोती तालाब उद्यान में भीषण गर्मी के बीच कल 12 चमगादड़ मृत पाए गए। वन विभाग ने शव को जांच के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। गुड मॉर्निंग जबलपुर।

दोस्तों, ये आपने, हमने और सबने अवश्य ही महसूस किया होगा कि जब भी हम अपने मित्रों करीबियों से मिलते हैं तो कुशल क्षेम तो पूछते ही हैं और ढेर सारी चर्चाएं भी करते हैं और उस दौरान चल रही उस ऋतु की परेशानियों का ज़रूर जिक्र करते हैं, चाहे बारिश की दिक्कतें हो, शीतलहर हो या हो तपती ग्रीष्म। और इस समय भी हम चिलचिलाती धूप का सामना कर ही रहे हैं। साथियों, इन गर्मियों में जल संकट भी हम अपने शहर कस्बे के कई क्षेत्रों में देखते हैं कि जल के लिए कितने संघर्ष हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि उन्हें सहज सुविधा से ये उपलब्ध है। कभी बासी मानकर बाल्टी गागर भर पानी हम बहा देते हैं। शादी समारोहों में बोतलों में बचा आधा पानी यदि इकट्ठा किया जाए तो कई लीटर होगा, जो किसी बाग बगीचे में या जीव जंतुओं की प्यास बुझा सकता है। श्रोताओं, पानी की कीमत उनसे पूछिए जो सूखे पथरीले इलाकों में या रेगिस्तान में जल की एक एक बूंद को संजोते हैं। उनके लिए तो रुपये से बढ़कर शीतल जल होता है। श्रोताओं, अमृत एक अमृत तुल्य, जल एक अमृत तुल्य प्राकृतिक संसाधन है, तो कभी सफाई के नाम पर कभी बासी मानकर हमें इसे बहाना नहीं है। हम अपनी सोच और उपलब्धता के आधार पर इसका उपयोग करते हैं, लेकिन कभी एक दिन भी नलके में पानी ना आए तो उसकी दिक्कतें क्या होती हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमें पानी का उपयोग अपनी विवेकशीलता, जिम्मेदारी और संयम से करना चाहिए, अन्यथा हमारी लापरवाही हमें एक प्यासा अंत दे सकती है। पानी है जिंदगानी, जल है तो कल है, जैसे वाक्यों नारों का मर्म हमें गंभीरता से समझना चाहिए।

राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम शोर। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में सुनिए कुछ संदेश।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। श्रोताओं, हम देश के जिस नगर कस्बे या गांव में रहते हैं उसका एक विशेष अंचल होता है। इसकी बोली, पहनावा, खान पान, परंपराएं उसकी पहचान होते हैं और इन अंचलों में कई महान कलाकार, लोकनायक, गायक अपने कार्यों से जनमानस के हृदय में बस जाते हैं। जैसे हमारा अंचल है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के महोबा ज़िले में जन्मे वीर आल्हा और ऊदल की जयंती आज 25 मई को मनाई जाती है। इन महान चंदेल सेनापतियों और योद्धाओं को उनकी वीरता और साहस के लिए याद किया जाता है। श्रोताओं, इनकी 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन लोक कवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड में मिलता है। आल्हा को माँ शारदा का अनन्य भक्त माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार वे आज भी अमर हैं। 12वीं सदी में बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे ये दो शूरवीर कलिंजर के राजा के सेनापति थे। इनके लड़े अंतिम युद्ध में ऊदल को वीरगति प्राप्त हुई और आल्हा ने वैराग्य ले लिया। बुंदेलखंड की पवित्र माटी में वीर आल्हा की सुगंध सदा के लिए बसी हुई है।

भरत व्यास की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीतकार सी रामचंद्र, फिल्म का नाम नवरंग। साथियों, हम सभी की अभिरुचियां अलग अलग होती हैं। किसी को शांत बैठकर करने वाले कार्य या खेलों में रुचि होती है तो कोई बहुत ऊर्जावान भागदौड़ वाले खेलों में रुचि रखता है। खेल कूद के जीवन में कई फायदे होते हैं। शरीर चुस्ती फुर्ती वाला, ताकतवर, ऊर्जावान बनता है और खेल में प्रतिद्वंद्विता की भावना, आगे बढ़ने की, जीतने की जिद, जोश, खरोश उस खिलाड़ी को एक विशेष पहचान दिलाती है। वहीं हार से भी वो कई सीख ग्रहण करता है। श्रोताओं, आज है विश्व फुटबॉल दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। पहली बार यह दिन 25 मई 2024 को मनाया गया। इसका उद्देश्य फुटबॉल खेल के जरिए राष्ट्रों के बीच शांति, विकास और एकता को बढ़ावा देना है और उम्र, नस्ल की परवाह किए बिना खेल सबका है इस विविधता का जश्न मनाना।

0: आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम पराया धन। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम लेकर आए हैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा से ली गई भेंटवार्ता, गोंडकालीन जल संपदा संस्कार धानी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। भेंट करता है प्रशांत परमार।
1: नमस्कार श्रोता मित्रों, जल संरक्षण, जल संपदा का संरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर ग्रीष्म ऋतु के आते ही चर्चा तेज हो जाती है। संस्कार धानी जबलपुर की जल संपदा और विशेष रूप से गौणकालीन जल संपदा और उसके प्रबंधन के इतिहास पर चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है एक बेहद ही खास व्यक्तित्व को। इससे पहले कि मैं उनसे चर्चा शुरू करूं, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूं। आप पर्यावरणविद तो हैं ही, जिस वजह से आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आप सक्रिय रूप से कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। आप एक कुशल वास्तुविद हैं और जबलपुर और अन्य शहरों में हजारों मजबूत और सुंदर भवनों के निर्माण का श्रेय आपको जाता है। देश विदेश के अनेक तकनीकी संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं। आप संगीतविद भी हैं और आपने गायन वादन, विशेष रूप से वायलिन वादन और कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है और संगीत की इन तीनों विधाओं में वर्षों से संगीत साधना कर रहे हैं। आप एक सम्मानित शिक्षाविद हैं और शहर के एक प्रतिष्ठित तकनीकी महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में आप विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी आप शिक्षक हैं और इसे सहयोग ही कह सकते हैं कि आपका जन्म भी शिक्षक दिवस के दिन ही हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम विद्वान इंजीनियर डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी का। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद प्रशांत जी।
1: डॉक्टर वर्मा, आज के विषय गौणकालीन जल संपदा और उसका स्वरूप संस्कार धानी के वर्तमान परिपेक्ष में, इस पर एक पर्यावरणविद के रूप में आपसे पहला प्रश्न हम ये करना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं कि जबलपुर में एक लंबे समय तक गौण शासकों का अद्भुत इतिहास रहा है। इस काल में जल संपदा के रूप को आप किस तरह देखते हैं?
2: प्रशांत जी, गौणकालीन जल संपदा जबलपुर ही नहीं पूरे देश में एक अद्भुत स्थान रखती है और जो आज से 500-600 साल पहले जो उनकी दूरदर्शिता थी, उनका विजन था अपने जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति, जल के यूज़ करने के प्रति, वो अद्भुत रहा है। हम देखते हैं कि गौणकालीन इतिहास में संग्राम शाही, मदन शाही और रानी दुर्गावती का विशेष तौर पर एक विशेष काल रहा है और उन्होंने न सिर्फ जल स्रोतों को संरक्षण प्रदान किया, उसका संवर्धन किया और उसको आगे परंपरा के रूप में उसको लेके गए थे। हम देखते हैं कि जबलपुर शहर के कई तालाबों के नाम जो हैं वो गौणकालीन शासकों के नाम पर या उनके साथियों के नाम पर हमको देखने मिलते हैं। जैसे शहर के बीच में रानीताल तालाब को आप समझ सकते हैं, रानी दुर्गावती के नाम पर था। आधारताल तालाब जो है वो रानी दुर्गावती और गौणकालीन शासक उनके सेनापति आधार सिंह कायस्थ थे। ऐसे ही कई तालाबों के जो हैं, इमरती तालाब हम कह सकते हैं, चेरीताल तालाब कह सकते हैं, ठाकुर ताल कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं गौणकालीन शासकों से या उनकी प्रतिनिधियों से जुड़े हुए हमको देखने को मिलते हैं।
1: जी जी, संजय जी, निरंतर विकास के साथ हम देखते हैं कि एक नगर के अपने स्वरूप में भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। आप हमारी जल संपदा को किस रूप में देखते हैं?
2: जबलपुर की जल संपदा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, हम देखते हैं कि लोगों की जहाँ तक सोच है उसमें जो पुराने हमारे जल स्रोत रहे हैं उतने गंभीर नहीं हैं। वो देखने को मिलता है कि गौणकालीन शासकों के काल में 52 तालाब और 84 तलैया, लगभग 136 ताल तलैयों का एक इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहे हैं। वहाँ पर कॉलोनियाँ विकसित होती जा रही हैं, लोग मकान बनाते जा रहे हैं उसमें, मतलब धीरे धीरे कुल मिला के नष्ट होते जा रहे हैं तालाब। तो दूरदर्शिता वर्तमान समय में हमको कम देखने को मिलती है और यदि यही रहा तो शायद जो हमारे विरासत में छोड़ के गए हैं गौणकालीन शासक, वो हम इसको खो देंगे और हम सारे तालाबों को धीरे धीरे करके नष्ट कर देंगे।
1: जी जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर संजय वर्मा ने अपने शहर जबलपुर में तालाबों और सरोवरों के ऊपर एक बेहतरीन शोध किया है, तो इस अद्भुत कार्य के बारे में आप हमारे श्रोताओं को भी कुछ बताइए।
2: जी जरूर प्रशांत जी, हमारे जीवन का ये बहुत एक अद्भुत पल रहा है जो कि मैं इस क्षेत्र में कार्य कर पाया और लगभग 25 साल पहले मैं इस कार्य में संलग्न हुआ कि जबलपुर के सारे जो तालाब हैं उनको बचाने की कुछ ना कुछ प्रयास किया जाए। मैंने कोशिश की और धीरे धीरे करके प्रयास करते करते और एक ऐसे मकाम पर मैं पहुँचा और ऐसे रूप में कहना चाहिए कि जबलपुर के तालाबों को एक डॉक्यूमेंटेशंस के तौर पे मैंने अपने शोध कार्य से किया, और जबलपुर के सरोवर अनमोल धरोहर एक पुस्तक के रूप में मैंने इसका प्रकाशन किया। ये निश्चित तौर पर इसमें जबलपुर शहर के सारे तालाबों का ऑथेंटिक डाटा, जिसमें हम कह सकते हैं कि उस तालाब का, किसी तालाब का हिस्ट्री क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वो किसके प्रदेशन में है, वर्तमान स्थिति क्या है, और उसमें क्या कार्य किए जा सकते हैं उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए, तो ये कार्य मैंने किया और मैं गौरवशाली हूँ कि ये पुस्तक के रूप में, एक डाटाबेस के तौर पर आज हमारे समाज के सामने है, जबलपुर के सरोवर अनमोल धरोहर के रूप में।
1: जी डॉक्टर वर्मा, आपने जो ये अद्भुत कार्य किया, जो एक शोध कार्य किया, उसके पश्चात शासन प्रशासन ने जबलपुर शहर के जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं, उसके बारे में बताइए।
2: बिल्कुल, ये हमारा जो मुहिम है वो शुरू हुई थी लगभग 2000 में, और धीरे धीरे करके 2011 में हमारी इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, और उसके पहले से भी मैं अप्रोच करता रहा जो स्थानीय प्रशासक हैं और तालाबों से जुड़े हुए जो प्रशासन है, विशेषकर जो मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण है, उनके अधिकारियों से मैं संपर्क में निरंतर रहा। और इसके पश्चात जब डॉक्यूमेंटेशन इसका हुआ, फिर मैंने प्रयास किया कि गवर्नमेंट को ये प्रपोजल्स भेजे जाएं ताकि जो जबलपुर के तालाब हैं उसको संरक्षित किया जाए, संवर्धन किया जाए। तो हम देखते हैं कि जबलपुर में आज कई तालाब, जैसे एक गुलौवा तालाब को सब लोगों ने नाम सुना होगा, गुलौवा तालाब है, कचपुरा पुल के नीचे तरफ को जाता है वो है, और आधारताल तालाब भी काफ़ी विकास की ओर है, और रानीताल तालाब जो बिल्कुल सेंट्रलाइज है जबलपुर शहर के केंद्र में है, उस पर भी एक नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, और ऐसे ही कई और तालाब जैसे रमनंगरा तालाब है या इमरती तालाब है, उसके भी संवर्धन के, संरक्षण के प्रशासन शासन प्रयास कर रहा है अभी।
1: जी संजय जी, प्रकृति में प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने के लिए पानी की नितांत आवश्यकता होती है, तो ऐसे में हम जल को, जल स्रोतों को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं?
2: प्रशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, कि देखिए इंसान जो है वो समझ सकता है, कह सकता है, एक दूसरे से शेयर कर सकता है, लेकिन हमारी प्रकृति में कई ऐसे प्राणी हैं वो आपस में अपनी भाषा तो समझ सकते, लेकिन उनको हम कैसे समझ सकते हैं, ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक जीव के लिए जल आवश्यक रूप से होता है, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे स्थलीय जीव हो, चाहे आकाशीय जीव हो, तो उनको पानी, उनके जीवन के लिए जल की नितांत आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए सोचने प्रश्न ये है कि हम अपना, जैसे हम तो पूर्ति कर लेते हैं कि जैसे पानी कहीं पर खत्म हो गया तो हम जाके मार्केट से खरीद सकते हैं, अपनी उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, जो भी जीव है प्रकृति में, वो तो जल पर ही निर्भर होते हैं। यदि हम जल स्रोतों को नष्ट कर देंगे तो धीरे धीरे करके हम उसका अस्तित्व भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान दिशा में हम देखते हैं कि जैसे हम जो निर्माण करें तो उसमें हमारा जो वर्षा का जल है या जो भी जल है उसको ज़मीन के अंदर पहुंचा के उसका भूजल संवर्धन संरक्षण

0: निरीक्षण करना हमारा नितांत रूप से आवश्यक है। हम देखते हैं कि आजकल कंक्रीट का ज़माना है, चाहे वो सड़कें बने या हम अपने घर को भी बनाते हैं तो चारों तरफ हरियाली कम कर रखते हैं और उसमें फिर कंक्रीट का उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे में जो बारिश का जल होता है वो ज़मीन में तो जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे करके भूजल स्तर भी कम हो जाएगा, भूमि जल भी कम हो जाएगा, सतही जल तो वैसे भी कम होता जा रहा है, उसको पूरते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरी प्रकृति का एक डिसबैलेंस कह सकते हो जाएगा, तो जलीय जीवों को और हम सबको भी ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति आगे चल के भविष्य में बनने वाली है। जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है निश्चित तौर पर ये सिर्फ ये कार्य मैं समझता हूँ जहाँ तक निजी तौर पर ये शासन प्रशासन का ही दायित्व नहीं है, ये एक एक निजी व्यक्ति का भी दायित्व होता है। जैसे कि आप जब कोई घर बनाते हैं तो नियम में है, जो जब आप सेंक्शन कराने जाते हैं नगर निगम जाते हैं तो उसके एक नियम में है कि आपको अपने घर में अनिवार्य रूप से जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है वो लगाना है, और अलग अलग स्क्वायर फीट के प्लॉट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1500 स्क्वायर फीट तक का जो है वो एक, और 2400 स्क्वायर फीट के आसपास का जो मकान है उसमें कुछ राशि वो जमा कराते हैं, इस आशय के साथ में कि आप जब अपना मकान पूर्ण कर लेंगे तो आप अपना वहाँ पर भूजल संरक्षण के लिए एक अपना सिस्टम लगाएंगे। जो सिस्टम होता है जैसे 1500 स्क्वायर फीट तक के लिए 7500 रुपये का प्रावधान है और 2400 स्क्वायर फीट तक के लिए 10000 रुपये तक का प्रावधान होता है। जब आप ये सिस्टम लगा लेते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लग जाता है, तो ये जो अमाउंट जो लिया जाता है सेंक्शन के समय पर वो उसको रिफंड कर देते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि उन लोगों को जागरूक करें, इसका प्रयास हर व्यक्ति करे कि उसको घर जब बनाएगा तो वो जो वो जल संवर्धन का संरक्षण का वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपने यहाँ लगाएगा, एक प्रयास तो ये होना चाहिए। दूसरा, कंक्रीट की मात्रा कम करें, घर में पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाएं, परपोरेटेड ब्लॉक्स लगाएं ताकि पानी जा पाए। तो ये सामूहिक प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक शायद इस लक्ष्य में हम आगे पूर्ति नहीं कर पाएंगे।
1: डॉक्टर वर्मा, आप एक वास्तुविद हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, संगीतविद हैं, तो फिर जल संवर्धन और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति आपको ये संस्कार कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे ये प्रेरणा मिली, इसके बारे में बताइए।
0: प्रशांत जी, जैसे कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार जो है वो गुट्टी में माँ पिलाती है, बचपन से ही संस्कार देती है, उनके माता पिता उनको संस्कार देते हैं, प्रेरणा देते हैं, इसमें कहीं पर म्यूजिशियन या सिविल इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ ये जो हुआ, मेरा बचपन जो है वो गांव में जो हमारा रहा वो परिवेश में रहा है, और मेरे गांव में तालाब थे, नदियां थी पास में, और मेरे तो घर के आंगन में ही सामने ही 10 फीट की दूरी पर कुआं था, और वो कुआं का हम याद करते हैं तो लगभग इन गर्मी के दिनों में पूरा गाँव वहाँ पर आता था पानी भरने के लिए, और वो छोटा सा कुआं ज़रूर था लेकिन पूरे गांव की प्यास पूरी करता था। तो धीरे धीरे करके ऐसे संस्कार हमारे इसमें समाहित होते गए, और जब भी हमको आगे चल के मौका मिला, क्योंकि मैं निर्माण से भी जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा कि जबलपुर शहर के कई तालाब जो हैं वो पूर के उनको ख़त्म करके गालोनियाँ बन रही हैं, तो ये बड़ा मेरे को दुख रहा। तब मैंने एक समय पे एक अपना लक्ष्य लिया, जीवन का उद्देश्य बनाया कि इस क्षेत्र में हमको कुछ ना कुछ अवश्य रूप से करना है, और जबलपुर शहर जो है वो संस्कारधनी है, वो ताल तलैयाओं का शहर है, मैं उसमें एक छोटा सा भागीरथी के तौर पे अपने आप को समझता हूँ, और जो छोटे से मैंने प्रयास किए हैं वो निश्चित तौर पर एक आगे वाले भविष्य के लिए, समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में यदि कहीं पर भी काम आता है तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी।
1: निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। संजय जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अब चलते चलते हमारे श्रोता मित्रों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रशांत जी, यदि आप इजाज़त दें तो मैं दो लाइन से गुनगुना के अपनी बात को पूरा करूं। एक गीत बहुत पसंद है जो रविंद्र जैन जी ने लिखा भी है और उसका संगीत भी दिया है, तो मैं वो दो लाइन गुनगुना के आज की वार्ता को समाप्त करेंगे। चांदी

0: जल जो न होता तो ये जग जाता जल। ये जल जो है जीवन का उद्देश्य है, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। निश्चित तौर पर मैं आज के इस भेंटवार्ता के माध्यम से ये कहना चाहूँगा अपने मित्रों के साथ कि जल को बचाएं, जल को संरक्षित करें। जल को बचाएंगे तो कल को बचाएंगे, हम अपने भविष्य को बचाएंगे।
1: डॉक्टर संजय वर्मा, आज आपने हमारे कार्यक्रम में आकर

0: के गौड़कालीन जल संपदा और उसके स्वरूप के बारे में और संस्कारधानी जबलपुर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जल संपदा है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और मैं समझता हूँ कि आज की इस चर्चा से निश्चित रूप से हमारे श्रोता मित्र लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर संजय वर्मा, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सारे श्रोता मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: संगीतिका में लीजिए सुनिए सुजाता फिल्म का गीत, गीता दत्त आशा भोसले के युगल स्वर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की, गीत सुने, मनोरंजनों के साथ ज्ञानवर्धन भी हुआ। कुछ और रोचक चर्चाओं और गीतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब आज के गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अस्मिता को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
6: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देबांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
9: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
9: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ते ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government

नैया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास के स्वर में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए हंसराज बहल का लिखा ये नगमा मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम राजपूत।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए प्रोफेसर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: जरा ठहरो

श्रोताओं, फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया अपनापन फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, दर्श बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दिए जाएंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के फालटा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता का भाजपा पर अटूट भरोसा दिखाती है। गंगा दशहरा के मौके पर आज प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान को जल आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। आज प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियां और नहरों की सफाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव माँ शिप्रा को 300 फीट की चुनरी अर्पित करेंगे। नौतपा शुरू होने के पहले ही दिन आज मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। कल खजुराहो, नौगांव में पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं है। और IPL के आखिरी लीग मैच के पहले मुकाबले में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात देकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक रसधार। आज की कलाकार हैं शोभना कश्यप और शिवानी राजपूत। लीजिए सुनिए इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

लोकरसधार में अभी आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए बुंदेली लोकगीत। आज की दूसरी कलाकार हैं शिवानी राजपूत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इनकी आवाज में।

इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रसधार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने शोभना कश्यप और शिवानी राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। उर्दू कार्यक्रम आईना अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी के मुअज़्ज़ज़ सामईन, अदब, फिक्र और एहसास की इस खूबसूरत महफिल आईना में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मैं आफरीन बानो आपकी मेज़बान हाजिर हूँ एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें उर्दू अदब की लताफत, शायरी की मिठास और इल्म आगही की रोशनी शामिल है। तो सामईन कराम, उर्दू अदब की तारीख में बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाती हैं। उन्हीं दरख्शां नामों में से एक अहम नाम डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर का भी है, जिन्होंने तहकीक, तनकीद, तदरीस और शायरी के मैदान में ग्राहकद्र खिदमात अंजाम दीं। आज के प्रोग्राम में मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर रजिया हामिद पेश कर रही हैं एक मालूमाती और फिक्रंगेज तकरीर जिसका उन्वान है डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर, शख्सियत और फन। तो आइए समाअत फरमाते हैं डॉक्टर रजिया हामिद की ये खुसूसी तकरीर।
1: अबू मोहम्मद सहर की शख्सियत जाजिम नज़र थी। उनको खुदा ने बहुत सलाहियतें वदियत की थीं। उनके ख़ानदान में शायर व अदीब मौजूद थे जिनसे उन्होंने फैज़ हासिल किया। बेनियाजी, साफ गोई, मोहतात रवैया जैसी खसूसियात उनमें मौजूद थीं। दयानतदारी और सच्चाई ने उनकी शख्सियत को संवारा था। अबू मोहम्मद सहर का नाम अबू मोहम्मद अबुल कासिम था

उनके वालदेन ने रखा था। उनके वालदेन का अवाइल उम्र में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए नाना इजहार आलम के जेर साया परवरिश से परवाख्त हुई। आपकी इब्तदाई तालीम फतेहपुर में और आला तालीम इलाहाबाद में हुई। 1951 में एमए उर्दू किया। उसके बाद भोपाल के गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज में शुबा उर्दू में बहैसियत लेक्चरर दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। अबू मोहम्मद साहब की शख्सियत में जाज़बियत थी, उनके चेहरे पर ज़हानत, आँखों में इल्म की चमक थी। उनको देखकर अजनबी शख्स का मुतवज्जह होना नागुज़ीर था। अबू मोहम्मद सहर बाअख़लाक़ मुतवाज़े शख्सियत थे, वो उसूल पसंद थे। अपने उसूलों से रूगर्दानी उनको पसंद नहीं थी। अपने दौर तालिब इल्मी से ही मुताले के शौकीन रहे। उनके मिजाज में रखरखाव, तबीयत में नफासत और तहजीबी संजीदगी शामिल थी। उनकी संजीदा मिजाजी उनसे रगबत ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके उस्तादों को खुसूसी तौर पर मुतवज्जे किया। उन्होंने अपने शागिर्द को बहुत अजीज रखा। अबू मोहम्मद सहर न सिर्फ मुताला करते बल्कि उनसे अखस व कबूल भी करते थे। ज़माना तालिब इल्मी से उनके अदबी मजामीन उर्दू के मुक्तदर रसाइल में शाया होने लगे थे। अबू मोहम्मद सहर को ज़बान और उसके अल्फाज की दुरुस्त अदायगी की बहुत फिक्र रहती थी। उनकी कोशिश होती थी कि क्लास के तालिब इल्मों का मतन की क़रात में लहजा और इमला दोनों दुरुस्त हो, यहाँ तक कि वह शेरी मतनों की दुरुस्तगी पर भी बहुत ज़ोर देते थे। उनकी किताब उर्दू इमला और उसकी असलाह इसी फिक्र के नतीजे में जहूर में आई। उर्दू कसीदा निगारी का चलन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। अबू मोहम्मद सहर ने मौलवी अब्दुल हक के कहने पर उस तरफ तवज्जो दी और उर्दू में कसीदा निगारी के उन्वान पर पहले एक तवील मकाला तहरीर किया। उसके बाद उसमें मज़ीद इजाफा करके 1958 में किताबी शक्ल में तबाह कराया। अबू मोहम्मद सहर ने इस पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने उर्दू कसायद का इंतखाब करने के साथ ही हवाशी लिखे और अपने मुकदमे के साथ उसको किताबी शक्ल में 1969 में तबाह करवाया। उनकी मेहनत उन्हें उर्दू की इस सिंफ को दोबारा लोगों में मकबूल कर दिया और एक बावक़ार मरतबा किताब सामने आई। इस अरसे में अबू मोहम्मद सहर ने अपने पीएचडी के मकाले की तैयारी भी जारी रखी, जो उन्होंने उर्दू में अमीर मीनाई का हिस्सा के उन्वान से मुकम्मल किया, जिस पर आगरा यूनिवर्सिटी ने उनको 1969 में आला सनद से सरफराज किया। ये किताब मकाला अमीर के नाम से शाया हुई और इसका दूसरा एडिशन चंद साल पेशतर अमरीका से शाया हुआ। अबू मोहम्मद सहर के तनकीदी और तहकीकी कामों का दायरा बहुत वसी है। वो तहकीक के उसूलों के बारीकियों के पारख थे। अपने तहकीकी मजामीन में उनका बहुत ख्याल रखते थे। अपने अक्सर मजामीन में उन्होंने तहकीक के फन से मुतालिक इजहार ख्याल भी किया है। 1961 में उनके मजामीन का मजमुआ तनकीद और तजिया मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने अपने कारी को उसूल तनकीद से मुतालिक रहनुमाई की है। उनका मानना था कि तहकीक के लिए खुला हुआ जहन, मारूजियत और एतदाल तवाजन ज़रूरी है। उनके कई मजामीन गैर मतबूआ थे। उनके इंतकाल के बाद उनको अबू मोहम्मद सहर की अहलिया ने मुरतब करके अदबी तहकीक़ और तनकीद के नाम से 2002 में शाया करवाया। अबू मोहम्मद सहर ने गालिब के ऊपर भी बड़ा वाकई काम किया है। उन्होंने एक मुफसल मजमून 1960 में गालिब व फ़लसफ़ा गालिब तहरीर किया, जो अरबाब हलवक्त को बहुत पसंद आया। हकीम अब्दुल हमीद हमदर्द वाले ने गालिब के मुतालिक मजामीन तरतीब देते वक्त अबू मोहम्मद सहर के इस मजमून को अपने इंतखाब में सबसे पहले शामिल किया। 1969 में गालिब की सदाला जश्न के मौके पर डॉक्टर साहब ने उसके लिए गालिब सदी की इस्तेलाह वजा की, जो बहुत पसंद की गई। गालिब पर उनकी दूसरी किताब गालिबियात और हम 1984 में मंजर आम पर आई। अबू मोहम्मद सहर के मजामीन में नुक्ता रसी और नुदरत पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी तहरीरों की अहमियत बढ़ गई है। कुदरत ने उनको खलाकाना जहन वदियत किया था, जिसकी मिसालें उनकी तहकीक और तनकीद में जा बजा मिलती हैं। अबू मोहम्मद सहर के अदबी सफ़र की इब्तिदा गुशायरी से हुई थी, मगर उन्होंने तनकीद और तहकीक को अपने जोला निगाह का महवर बनाया और शायरी पस पुश चली गई। अबू मोहम्मद सहर को शायरी से भी रगबत थी। शेर कहते थे मगर कम कम। गज़ल हमारी तहजीब की रवायत है, यह हमारी ज़िंदगी का इजहार और हमारी ज़िंदा रवायत का इर्तका भी है। अबू मोहम्मद सहर ने अपने क़ुव्वत मुतख़य्यला से शायरी में नए नए मजामीन के साथ फरसूदा मजामीन को भी

यही ऐलान खूबखू कीजे, शीश पत्थर के रूबरू कीजे, फिर बहारों की

रोकिए अपनी मुस्कुराहट को, रोकिए अपनी मुस्कुराहट को, मेरा चाके जिगर फूकीजे, फिर बहारों की

ते सुकून कभी हमसे भी गुफ्तगू कीजिए। फिर बहारों की

जब है बुरे जमाने को खूब तर कहिए खूब रू कीजे फिर बहारों की

आप तो ही ने आरज़ू कीजे फिर बहारों की

ये जिक्र उनका नबे वजू कीजे फिर बहारों की।

मतलब पेश कर रहा हूँ समाज समय। चांद उभरे तो मुस्कुराए हम, चांद उभरे तो

क्या अजब लौट कर ना आए हम फिर उदासी।

देख के मुस्कुराए हम, उसका एहसान है जो याद रखें, उसका एहसान है जो याद

0: तो मुस्कुराए हम फिर उदासी में डूब जाए हम। चांद उभरे तो मुस्कुराए हम।
1: सामईन अजीज, आपने समाअत फरमाया मसूद रजा से उनका खूबसूरत कलाम, जिसमें एहसासात की सच्चाई, फिक्र की गहराई और शायरी की दिलकशी नुमाया थी। यकीनन ऐसे अशार देर तक दिलो दिमाग में अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम आईना अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप अपने तासुरात, तजावीज और पसंदीदा आरा हमें खत के जरिए जरूर अरसाल कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन, डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 4620002। अब आपकी दोस्त आफरीन बानो को दीजिए इजाजत, आदाब।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? यदि हाँ, तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। देवास जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि गांव में तापमान 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी और लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमिक जोन परियोजना लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे हरित उद्योग, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश आएगा। विधायक आशीष शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा। इसी बीच जनगणना 2027 की तैयारियां भी पूरे जोर पर हैं। जिले में 1 मई से घर घर जाकर डिजिटल तरीके से मकानों की गिनती की जा रही है। अब तक 3,59,000 से ज्यादा मकानों का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। गर्मी के बीच पानी बचाने की मुहिम भी तेज हो गई है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत गाँव गाँव में कुएं, बावड़ियां और नदी नालों की सफाई हो रही है। वहीं शिप्रा नदी के घाटों पर भी साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देवास नगर निगम ने कचरे को भी कमाई का जरिया बना दिया है। शहर से रोज निकलने वाला 60 से 65 टन गीला कचरा अब शंकरगढ़ प्लांट में खाद में बदला जा रहा है, जहां हर दिन 10 से 12 टन जैविक खाद तैयार हो रही है। दूसरी ओर जंगलों में भी रौनक बढ़ गई है। सतवास, कन्नौद, बागली और निमावर जैसे इलाकों में तेंदूपत्ता तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस साल करीब 1,00,000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है।

0: खेती किसानी की बात करें तो कृषि विभाग का किसान रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, उन्नत खेती और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दे रहा है। मूंग और उड़द बेचने वाले किसानों के लिए भी जरूरी खबर है। 25 मई यानी आज से 15 जून तक सरकारी खरीद के लिए पंजीयन होगा। इस बार ओटीपी नहीं बल्कि आधार से फेस स्कैन कर पहचान की जाएगी। जनजातीय इलाकों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के जरिए गांव में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देवास में कुपोषित बच्चों के लिए किलकारी अभियान 2.0 उम्मीद बनकर सामने आया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अमलतास अस्पताल में भर्ती कर मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और अब तक 72 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,457 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जिला जेल देवास में लगे विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्रा ने बंदियों से सीधे चर्चा कर उनके मामलों की जानकारी ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर में विशाल प्लेसमेंट ड्राइव होगी, जहाँ 450 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित युवाओं को करीब 17,000 रुपए वेतन मिलेगा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सख्त हो गया है। नेमावर, फतेहगढ़ और शिप्रा में बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने, सूर्यास्त के बाद नौकायन और नशे में बोटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के इच्छुक छात्र 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिले के बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया का आरसीटी केंद्र 30 दिन का मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करा रहा है, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सामग्री सब मुफ्त मिलेगी। कोर्स के बाद खुद का काम शुरू करने के लिए सरकारी लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी। इच्छुक युवक 9893193973 पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर, ग्वालियर के बादल राजपूत ने सरकारी छात्रवृत्ति योजना से 33 लाख रुपए की मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब दतिया में सरकारी डॉक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे होनहार छात्रों की पूरी एमबीबीएस फीस उठाने का फैसला किया है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी, आज की इस कड़ी में आपको हमारा नमस्कार।

श्रोताओं, वंदे मातरम राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त वो कालजयी स्तुति है जो भारत माता के सुजल सुफल शस्य श्यामल रूप के साथ उनके ऐतिहासिक और धार्मिक गौरव को नमन करती है।

श्रोताओं, देशवासियों को ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में एकजुट करने में, देश प्रेम की अपार भावना जागृत करने में वंदे मातरम गीत ने जो महती भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। आज डेढ़ सदी बीतने पर भी वंदे मातरम की गूंज हर देश प्रेमी नागरिक के साथ सैनिक और सीमा पर तैनात जाबाज सिपाहियों के मन में अपनी भारत माता की रक्षा करने की अलख जगाती है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने दैनिक जीवन में वंदे मातरम से ही अभिवादन करें और अपनी भारत माता की स्तुति प्रतिदिन प्रतिक्षण करें। वंदे मातरम।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम, गौरव गान की 150वीं आज की ये कड़ी। थोड़ी ही देर में विश्व दर्पण अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से ओस्लो में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका की 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्गियो गोर को फोन पर बातचीत में ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तैयार है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा को उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में अमेरिका और भारत के संबंधों का महत्व उजागर करती है।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी। ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते से पूरी तरह अलग होगा। श्री ट्रंप ने ओबामा काल के ईरान परमाणु समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तुर्की की दंगा पुलिस ने कल मुख्य विपक्षी दल के मुख्यालय में आंसू गैस के गोले दागे और जबरन अपदस्थ नेतृत्व को बाहर कर दिया। इससे तुर्की के लोकतंत्र के केंद्र में संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट।
3: रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP की इमारत के अंदर आंसू गैस के बादल छा गए और अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तुर्की की एक अदालत ने चुनाव में गड़बड़ी का हवाला देते हुए CHP के मौजूदा नेता ओजगुर ओजेल को पद से हटा दिया और 2023 के उस चुनाव के नतीजों को भी रद्द कर दिया गया जिसके जरिए वे चुने गए थे। इसके बाद रविवार को अंकारा के गवर्नर ने मुख्यालय को खाली कराने का आदेश दिया। अदालत ने ओजेल की जगह पार्टी के पुराने अध्यक्ष कमाल किलिक दराग्लू को फिर से पद पर बहाल कर दिया जो 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में तैयब अर्दोगान से हार गए थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया की एक एरोस्पेस फैक्ट्री में प्लास्टिक बनाने वाले खतरनाक रसायन का टैंक क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का आदेश जारी किया गया है। पिछले सप्ताह GKN एयरोस्पेस कंपनी में करीब 22 से 26,000 लीटर मिथाइल मेथिक्रिलेट केमिकल से भरा टैंक बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इससे शहर की हवा में जहरीली गैस फैलने लगी थी। इस बेहद ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल प्लास्टिक और नकली दांत बनाने में होता है। इससे फेफड़ों, आंखों और त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000

जायरीन भाग ले रहे हैं। स्पेन में कल मध्य मैड्रिड में हजारों लोगों ने आवास की तेजी से बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन बढ़ती कीमतों के कारण देश में हाल ही में हुई आर्थिक प्रगति के बावजूद कई नागरिक प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर हो गए हैं। 2027 के आम चुनावों से पहले आवास संकट प्रधानमंत्री पेत्रो सांचेज के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते किराए को नियंत्रित करने और किफायती आवास तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सरकार से और अधिक कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के अनुसार 2025 के अंत तक स्पेन में आवास की कीमतों में साल दर साल आधार पर लगभग 13% की वृद्धि हुई है। कांगो के पूर्वी हिस्से में चल रहे इबोला के प्रकोप में अब संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से अधिक हो गई है। कांगो के संचार मंत्रालय ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 904 संदिग्ध मामले मिले हैं और 119 लोगों की मौत हुई है। इनमें अधिकतर मामले इटुरी प्रांत से हैं, जहां ये प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये प्रकोप अब कांगो के लिए अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है, लेकिन इस बीमारी के दुनिया भर में फैलने का जोखिम अभी भी कम है। बांग्लादेश में वर्ष 2022 से कार्यरत भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कल अपनी विदाई के अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री रहमान ने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रणय वर्मा को धन्यवाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत दोनों देशों के लोगों के हित में बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है। दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रही है। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञान आनंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंडमास्टर मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से वार्षिक 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आज से ओस्लो में शुभारंभ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। सुबह के 10:20 हुए हैं। हम हाजिर हैं फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा के साथ। आप सभी को अस्मिता का नमस्कार। पहले गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की है, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत और सुरेश कुमार सारथी, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, शीला, विशाल कुमार और गायत्री धंजे, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। आप सभी सुनना चाहते हैं गीत फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले के युगल स्वर में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

गीत फिल्म में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को। सारंगा कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। सपना संगीता रोड इंदौर मध्य प्रदेश से संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया

लाल फतेह चंदानी और लीला फतेह चंदानी, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, केआर साहू और गन्नूलाल रजक, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से दामिनी वर्मा,

मुकेश के गाए इस गीत के लिए। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

तारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी की, पटेल नगर मलोट पंजाब से गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू और डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गौरी नगर इंदौर से रेखा कामले, राखी तपस्या, करिश्मा पारस और आनंद कुमार कामले, बेरड़ी से वैष्णवी ढोमने, चंचल गायत्री ढोमने, कंचन सोनी राजेश सोनी, धीरज सव्वासेरे और अर्जुन गवनेकर। आप सभी सुनना चाहते हैं अनवर की आवाज़ में आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम हम हैं लाजवाब।

हम हैं लाजवाब, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनवर की आवाज़ में। शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में फरमाइश करता हमारे आप सभी श्रोता, गड़िया मोजी उस्तु से आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा, आरती, सुनीता देवी और प्रदीप कुमार मंडल, कुंदा नगर खरगोन से सुनीता सोनवणे, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम और ध्रुवा सोनवणे, प्रणाम सिटी खंडवा से मंदा खंडाले, सुभाष, राजेश, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू, जयश्री और यथार्थ कुमार खंडाले। आप सभी ने सुनना चाहा है ममता फिल्म का ये नगमा, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

सारंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए इंदिवर की शब्द रचना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। संगीतकार हैं बप्पी लहरी और फिल्म का नाम मोहब्बत और इस गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू डुनडुन और इनके परिवार के सभी सदस्य। सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से राजेश नेमा संगीता भावना और प्राची नेमा। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश श्रीमती प्रीति नवनीत राय। नर्मदा कॉलोनी मंडला मध्य प्रदेश से डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी पुष्पा ज्योतिषी गोल्डी रोली लकी श्वेता और परु ज्योतिषी। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर मोहब्बत फिल्म का ये नगमा।

सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली शहर मोरी गेट से रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और कन्हैया लाल। ग्राम पंचायत बठेना से अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी और बलकरण वर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। चटोदा सारा गांव से आयुषी वर्मा, कृत वर्मा, सुजान और सुहद्रा वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं क्रोधी फिल्म का ये नगमा, जिसमें युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सारंगा कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान की शब्द रचना। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। और इस गीत के लिए पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने, छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राशि श्रीमती शीतल राजेश, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से बलविंदर विरक, जयतेग मीका और हरदेव विरक, कवर कॉलोनी बड़वाह से आदित्य श्रीमाली, अदिति श्रीमाली, प्रवीण, मीना, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा।

0: इस गीत के साथ ही आज का सारंगा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये हो गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ाई है। संशोधित तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। जबलपुर पुणे और जबलपुर बांद्रा साप्ताहिक ट्रेनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे छात्रों, मरीजों और लोगों की यात्रा में आसानी होगी। प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए बोर्ड को स्कॉच अवार्ड दिया गया। और आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। नमस्कार श्रोताओं, सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो सखी रक्षा तंवर का प्यार भरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम फोन करे गीत सुने आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात बताना चाहेंगे। फोन करे गीत सुने कार्यक्रम अब रिकॉर्ड किया जाता है 10:30 से 11 बजे तक। कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902। इसका एसटीडी कोड है 0755। तो चलिए आज के पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, फोन करे गीत सुने।
4: जी मैम नमस्ते, मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बीरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
3: संतोष कुमार राव जी, कैसे हैं आप?
4: मैडम बहुत अच्छे हैं, आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही साफ स्पष्ट आवाजें आपकी। नमस्कार भोपाल गीत सागर जैसे कार्यक्रम हमारे मन को छू जाते हैं।
3: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बता दीजिए हमें।
4: खानदान मूवी का गाना।
3: खानदान फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
4: खानदान मूवी के तो सारे गाने अच्छे से अच्छे हैं मैम। पुराने गानों की बातें की जाए तो बहुत ही प्यारी प्यारी गीतों की फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से चलाई जाती है। खानदान मूवी का आप गाना सुनवा दीजिएगा, तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा।
3: तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, बड़ा सुंदर गीत आपने फरमाइश की है। और मैं जब तक आपका गाना ढूंढ रही हूँ, आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं?
4: मैडम तो आकाशवाणी स्टूडियो यूं कहें कि आकाशवाणी शहडोल में वार्ताकार हूं और मुझे वार्ता लिखने का बहुत ज्यादा शौक है मैम। तमाम कार्यक्रमों को सुनना भी अच्छा लगता है और साथ में वार्ता करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में कृषक भी हूं मैडम जी।
3: अभी क्या खेती कर रहे हैं आप?
4: मैडम अभी तो खेतों की तैयारी हो रही है क्योंकि इस समय नौतपा चलने वाला है और नौतपा में हम जो खास करके अपने खेतों की सफाई करते हैं, आसपास की जो धूल मिट्टी जम जाती है तो उसमें एक बार जुताई करके रहने देते हैं ताकि जो तपिश है गर्मी का वो खास करके खेतों में पड़े और जो हमारे खरपतवार हैं उन्हें साफ सफाई कर लें ताकि जो पहली बारिश हो जिसमें

0: कि हम अपनी फसलें ले सके, जैसे कि पहली बारिश में मकाई की बुवाई की जाती है, साथ में धान की रुपाई, तो धान की तैयारियां चल रही है मैडम जी समय।
1: अच्छा जी, धान की तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है संतोष जी। आपका गीत भी हमें मिल गया है, तो चलिए अब आपका गीत सुन लेते हैं कार्यक्रम
0: जी
1: में
0: मैम, बहुत
1: आपने।
0: बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।
1: जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी। नमस्कार, ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: राम नरेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि आकाशवाणी भोपाल के सभी उद्घोषक महोदय, उद्घोषिका महोदय और श्रोतागण भी ठीक होंगे। और इस समय जो गर्मी है वो काफी ज्यादा हो रही है, लगभग 40 डिग्री से ऊपर, कहीं कहीं 42, कहीं 45, कहीं 44 के आसपास पारा चल रहा है सभी जिलों में।
0: जी, जी, जी, जी।
1: और देखा जाए तो इससे तो सभी एहतियात बरत रहे हैं, सभी अपना बचाव कर रहे हैं, ठंडा पानी पीते हैं और कोशिश यही करते हैं कि तेज धूप में, गर्मी में, दोपहर में बाहर ना निकले, नहीं जाते हैं और जो भी जरूरी काम होते हैं वो सुबह के समय पूरे करने का प्रयास करते हैं और फिर शाम को 4 बजे के बाद में कोशिश करते हैं अपने घर के सारे काम पूरे करने की।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप वैसे, लेकिन 4 बजे भी नहीं, 6-6:30 बजे तक भी काफी धूप महसूस हो रही है।
1: आपने सही कहा, थोड़ा और दिन ढल जाए तो थोड़ा ठंडा वातावरण हो जाता है 5 बजे के बाद।
0: जी जी जी। तो राम नरेश जी, मौसम की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप कार्यक्रम में?
1: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। आज के कार्यक्रम में आप सुनवा सकते हैं हमें, फिल्म का नाम है अफलातून।
0: अफलातून फिल्म से?
1: जी जी, अफलातून फिल्म का गीत है और ये खबर छपवा दो अखबार में, ये गाने की लाइन है। बड़ा अच्छा सुरीला गीत है और इसमें जो अभिनय किया था वो अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म थी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश जी आपकी फरमाइश का, और ये जो आपका गीत है हमें मिल गया है और अब आपको सुनवाई देते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपके रेडियो सेट्स पर कार्यक्रम में, आपने प्रतिभागिता की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी नमस्कार दीदी, नमस्कार
0: जी। आपका नाम जान सकती हूँ?
1: जी जी जी, मैं आपका भाई अपने प्यारे से गांव खैर मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ।
0: राम जी गर्ग बात कर रहे हैं?
1: जी जी जी
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, पर दरअसल इस समय ये गर्मी बहुत ही जबरदस्त पड़ रही है हमारे रीवा में, बल्कि पूरे इंडिया में पड़ रही है। रीवा में तो बिल्कुल निकलना है मुश्किल है, 45-46 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है।
0: ये तो बहुत बहुत ज्यादा है
1: जी जी,
0: बड़ी मुश्किल आपको सामने आ रही होगी
1: जी। हम इन भर को कहे यहाँ तक कि मनुष्य को तो

0: जाती ही, पशु पक्षी भी बेचारे बहुत हाँ। इधर उधर हो रहे हैं गर्मी में, तो मैं चाहता हूँ कि उनको पानी पीने के लिए और कुछ खाने के लिए व्यवस्था हमारे भाई बहन लोग करें, और उसके साथ साथ अपना भी बचाव किए रहें इस गर्मी से, जहां तक हो सके तो 12 से 4 के बीच में ना निकलें।
1: जी बहुत बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और मुझे लगता है कि जरूर जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो आपके सुझावों को सुनकर उन्हें अमल में भी लाएंगे।
0: जी जी,
1: तो अभी कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, और कार्यक्रम में आपने फोन किया है, आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम हम सुनवा रहे हैं आपको, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज कार्यक्रम में?
0: ये जय संतोषी माता का गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ दीदी, करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो माँ।
1: और अब हम आपको आपका गीत सुनवाए देते हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत आपको आभार हमारी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: के लिए दीदी
1: जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: अनोखे सिंह,
0: अनोखे सिंह जी बात कर रहे हैं। जी अनोखे सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, नॉर्मल है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बाग जिला धार।
0: धार से बात कर रहे हैं आप जी। कैसा मौसम है वहाँ पर?
1: मौसम तो अच्छे ही है, जितनी गर्मी पड़ रही है उतने फल पौधे फ्रूट सभी आ रहे हैं अच्छे से।
0: अरे वाह, ये एक अलग नजरिया आपने बताया। ज्यादातर लोग गर्मी से बड़े परेशान हैं, पर ये एक नया नजरिया आपने बताया कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उतने अच्छे फल और सब्जियां आ रहे हैं।
1: हाँ, फल सब्जी फ्रूट पत्ते हरियाली बहुत।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: गाना सुनाऊंगे तो हमको तो सर जी क्रांति का ही सुनना है।
0: क्रांति फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: क्रांति का दुर्गा है मेरी माँ।
0: बिल्कुल, आपको आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करते हैं आप
1: जी? हम व्यवसाय करते हैं।
0: अच्छा, किस चीज का व्यवसाय करते हैं?
1: ये अपना गल्ला की खरीदी है और किराना स्टोर की दुकान है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और कैसा मौसम चल रहा है अभी? इतनी गर्मी है वहाँ पर, किस तरह से है मौसम?
1: मौसम तो रक्षा जी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बुंदेली लोकगीत मैं थोड़ा सा बजा दूँ, का नाम सुना दूँ आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाए।
1: हाय बाले माँ, हाय बाले माँ, मर जा रहे हम गर्मी में, हाय बाले माँ। बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, खजुराहो का टेम्परेचर बहुत 47 डिग्री के लगभग चल रहा है। और हमारा हुआ लगा हुआ बांधा है, हमारे यूपी का जो है बिल्कुल,
0: हाँ।
1: हमारे छतरपुर जिले से लगा हुआ है बांधा। तो आपने भी सुना होगा न्यूज में कि बांदा पूरे भारत में सबसे गर्म जिला।
0: बांदा का तो लगातार नाम आ रहा है तापमान सबसे ज्यादा होने के मामले में।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी
0: जी जी जी जी तो ऐसी गर्मी में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे जो आपको थोड़ा बहुत ठंडक दे दे?
1: बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म का नाम है दूध का कर्ज।
0: हाँ जी।
1: गीत की बोले कि तुम है दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
0: तो अब आपको गीत सुनवा देते हैं आपके रेडियो सेट्स पर। सुनिए अभी अगला गीत, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
1: मैं विनोद वर्मा
0: जी। विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बरोठा से।
0: बरोठा?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम
0: जी। तो कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप आज?
1: पुलिस और मुजरिम है ना।
0: हाँ जी, उसका कौन सा गीत?
1: अपनी आंखों की।
0: ठीक है जी विनोद जी, मैं ये गीत देख पा रही हूँ हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आपको ये गीत सुनवा देते हैं। और ये आपके रेडियो सेट्स पर अब बस आ रहा है, आपने कार्यक्रम में भाग लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी।
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। और यहाँ तो मौसम मैडम एकदम जबरदस्त, धूप तेज बढ़ गया है, उमस गर्मी है
0: जी,
1: लू भी खूब चल रहा है।
0: तो कार्यक्रम है फोन करे गीत सुने, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप आज?
1: फिल्म का नाम है भाग मिलता भाग और गीत के बोल है मस्तों का झुंड हवन करेंगे हवन करेंगे, गायक है दिव्या।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आपने फोन किया। तो लीजिए अब आपके पसंद का ये गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से आपके लिए प्रस्तुत है।

0: नमस्कार, कार्यक्रम
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
0: विवेक व्यास जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: और मैं ठीक हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी मेरा नाम रक्षा तवर है।
1: अरे वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में आज?
1: आज मुझे आपको सुनवा दें, फिल्म का नाम है सती सावित्री, लता मंगेशकर जी की आवाज है और गाने के बोल हैं जीवन डोर तुम्ही संग बांधी।
0: तो लीजिए अब आपका गीत आपको सुनवाई देते हैं और कार्यक्रम में आपने भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: अनिल कौशल्य इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: कैसे हैं अनिल जी?
1: बहुत अच्छे। हम बैंक में नौकरी करते हैं तो आज फोन लगाने का टाइम मिला, नहीं तो कभी फोन लगाने का टाइम ही नहीं मिलता हमको।
0: तो अब आप बताइए आपकी फरमाइश आज की, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: का नाम है दिल है के मानता नहीं।
0: दिल है के मानता नहीं फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: इस फिल्म का गीत है बाबला मेहता की आवाज में, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। रिपीट, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अपनी रेडियो साथी रक्षा तंवर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: इस घंटे की खास खबरें।
1: आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कारों में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार की गौशाला पहुंचकर मां वाग देवी के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को गौशाला को मां सरस्वती यानी वाग देवी का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। गंगा दशहरा के मौके पर आज जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में 3 दिन चली ग्रीष्मकालीन गिद्धगणना कल पूरी हुई। इस बार पूरे प्रदेश में 10,742 गिद्ध गिने गए, जो पिछले साल से करीब 1200 ज्यादा है। नौतपा शुरू होने के पहले ही दिन आज मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। और आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शामिल कर रहे हैं पहला पत्र बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गनौरी और प्रकाश वीर राजपूत की, डॉडी लोहारा बरलोदा से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम की, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की, कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। हीरो फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतला मुश्तबा खान, सादिक भाई, शाहिद भाई। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजेश शीतल, राजदीप राजेश और राशि राजेश की। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। 100 डेज फिल्म का गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में दिलीप ताहिर ने लिखा है, लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम ने गाया है।

अगले गीत सुनने की फरमाइश भेजिए सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का फिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली की। सुनना चाहा है जनता हवलदार फिल्म का गीत, अनवर ने इसे गाया है, मजरू के बोल हैं, राजेश रोशन ने धुन बनाई।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये आखिरी गीत ले रहे हैं। जय गजानन रेडियो श्रोता संघ के कापसी रोड अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिबाई बाकड़े, पवन कुमार बाकड़े, कमलाबाई और बाकड़े परिवार के सभी सदस्य, शिवसेना अकोला महाराष्ट्र से वहासत से कैलाश राव बाकड़े, वंदना ताई बाकड़े और बाकड़े परिवार के सदस्य, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर परी की, हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर बेरडी से हमें अपनी पसंद भेजते हैं, और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की, इनकी पसंद पर सुनिए फिल्म जुनून का ये गीत, विपिन सचदेव और अनुराधा पोडवाल ने इसे गाया है, सुरेंद्र साठी ने इसे लिखा है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव के गाए फिल्म जुनून के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का,

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: श्रोतागण प्रणाम। सुधिजन, पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र के चौथे प्रकरण लब्ध प्रणाशम को सुना। आज पांचवा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम अपरीक्षित कारक है। पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम,
1: कुदृष्टम कुपरिज्ञातम, कुश्रुतम कुपरीक्षितम, तन्नरेण न कर्तव्यम नापिते नत्र यत्कृतम। अर्थात परिणाम को बिना सोचे, बिना उसकी जानकारी प्राप्त किए किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जैसा मूर्ख नापित ने किया था। दक्षिण के किसी राज्य में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। वहां मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। भाग्य के साथ ना देने के कारण उसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई थी। निर्धनता के कारण होने वाले प्रतिदिन के अपमान से वो दुखी था।
2: सच है, निर्धनता बहुत बुरी होती है। मेरी इस निर्धनता को धिक्कार है। सम्मान, दर्प, कलाओं का ज्ञान, आनंद, रास रंग तथा सुबुद्धि, ये सभी वस्तुएं पुरुष के निर्धन होते ही चली जाती हैं। निर्धन व्यक्ति इनकी अपेक्षा करते

0: ये उपवास का विषय बन जाता है। धन के अभाव में व्यक्ति तुच्छ हो जाता है। मैं वंशन करके प्राण त्याग दूंगा।
1: उसी रात सपने में एक मठ के साधु ने उसे दर्शन दिया और बोला,
2: श्रेष्ठी, तुम निराश क्यों होते हो? वैराग्य ग्रहण करना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा उपार्जित पद नामक निधि हूँ। कल प्रातःकाल इसी रूप में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरे मस्तक पर लाठी से प्रहार करना। मैं तुम्हारे प्रहार से स्वर्णमय होकर अक्षय निधि बन जाऊंगा।
0: क्या यह स्वप्न सत्य होगा? नहीं नहीं, असत्य भी हो सकता है। कुछ भी कहना कठिन है, असत्य ही होगा यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि रात दिन में धन की ही चिंता किया करता हूं।
1: मणिभद्र अभी सोच ही रहा था कि उसके केश कर्तन आदि के लिए नापित आ पहुंचा। इसी समय स्वप्न में दिए गए निर्देश के अनुसार वो भिक्षु भी प्रकट हुआ। उसे देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और पास में पड़ी हुई लाठी से उस भिक्षु के सिर पर मारा। भिक्षु स्वर्ण मूर्ति बनकर तत्काल भूमि पर गिर पड़ा। सेठ ने गोपनीय ढंग से उस सन्यासी की स्वर्ण प्रतिमा को अपने घर के भीतर रखवा दिया। फिर नापित से बोला,
0: मित्र
3: जी,
0: तुम कुछ आभूषण और वस्त्रों को रख लो। इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए।
3: नहीं होगी।
0: आवश्यकता पड़ने पर और भी धन ले जाना मित्र।
3: अच्छा, ये घटना तो अद्भुत है भाई, ना पहले कभी देखा ना सुना। वाह।
1: दूसरे दिन नापित ने प्रातःकाल उठते ही खूब बड़ी लाठी तैयार करके रख दी। फिर सन्यासियों के मठ में पहुंच गया। 3 बार परिक्रमा करने के बाद उसने जोर जोर से श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसा करने के पश्चात वो नापित मठ के प्रधान भिक्षु के पास पहुंच गया।
3: महाराज, आपको मेरा नमन। मैं आपकी वंदना करता हूँ महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। आज समस्त भिक्षुओं के साथ भोजन ग्रहण करने मेरे घर पधारे महाराज।
4: भद्र, आप कैसी बात करते हैं?
3: जी महाराज,
4: आप हमें निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, भोजन का समय हो जाने पर हम लोग स्वयं घूमते हैं, किसी श्रद्धालु को देखकर उसके घर चले जाते हैं
3: जी।
4: और बहुत आग्रह करने पर हम केवल जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित भोजन करते हैं। आप यहाँ से तत्काल चले जाएं
3: जी,
4: और भविष्य में पुनः इस तरह की बातें न कीजिएगा।
3: भगवान, मैं आपके धर्म नियमों को जानता हूँ। बात यह है कि आपको अनेक भक्तगण बुलाते रहते हैं। इस समय मैंने ग्रंथों को बांधने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का संचय कर रखा है, और ग्रंथों को लिखने हेतु ग्रंथ लेखक को पारिश्रमिक के रूप में देने के लिए धन भी एकत्रित कर रखा है। पुनः शायद मैं ऐसा ना कर सकूं, इस कारण आप समय अनुसार विचार करके जैसी इच्छा हो करें महाराज।
1: फिर नापित घर चला आया। दोपहर होने पर मठ के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। जब भिक्षाटन के लिए भिक्षु निकले तो उन्हें आग्रह करके घर ले आया। फिर किवाड़ों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर लाठी से भिक्षुओं पर प्रहार करने लगा।
5: आए, ये ले,
6: सोना सोना,
5: ये ले, सोने में मर्दी, तुम ले, सोना चाहिए, सोना सोना चाहिए, तुम ले।
1: मार खाने से कुछ तो मर गए और जो जीवित बचे वे मस्तक के फूटने से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तभी उस मार्ग से नगर कोतवाल जा रहा था, उसने वो चीख सुनी।
7: उसने तो भोजन के लिए बुलाया तो नगर बच्चे को बुलाएंगे, अभी कहेंगे
5: सोना चाहिए सोना।
8: ये कोलाहल कैसा लगता है, इसी घर से आवाजें आ रही हैं। अरे ये रक्त रंजित सन्यासी, ओहो ये कैसे हो गया।
1: भिक्षुओं ने कोतवाल को पूरी कथा सुना दी। सिपाही नापित को बांधकर और सन्यासियों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचे। कोतवाल के पूछने पर नापित ने कहा,
5: महानुभाव मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरा अपराध ही क्या है। मैं और करता भी क्या। सेठ मणिभद्र के यहाँ मैंने ये घटना देखी थी और मैंने वैसा ही किया।
1: सेठ मणिभद्र को कोतवाल ने बुलाया। मणिभद्र ने स्वप्न में देखे भिक्षु की कथा सुना दी। कोतवाल ने उस अविवेकी नापित को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया।
8: सच बिना सोचे समझे उस विषय की पूर्ण जानकारी लिए बिना अगर किसी कार्य को किया जाए तो वही करना पड़ता है जो नकुल की मृत्यु के पश्चात देव शर्मा की पत्नी को करना पड़ा था। मैं सुनाता हूं। किसी नगर में देव शर्मा नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवले ने भी एक नेवले को जन्म दिया और मर गई। स्नेह के कारण उस ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे यानी नकुल का भी लालन पालन किया, किंतु वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेह से आच्छादित होने के कारण वो संदेह करती कि कहीं ये नकुल अपने जाति दोष के कारण मेरे पुत्र का अनिष्ट न कर दे। एक दिन वो अपने पुत्र को पालने में सुलाकर जल भरने के लिए तालाब जाने लगी। जाते जाते उसने नकुल को पुत्र की रक्षा का भार सौंपा। ब्राह्मणी के चले जाने के बाद देव शर्मा भी भिक्षाटन को निकल गया। संयोग से एक काला सर्प बिल से निकला। नेवले ने उस सर्प को देखते ही अपना सहज शत्रु समझकर भाई की रक्षा के लिए उसके साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ब्राह्मणी के लौटने पर वो नेवला प्रसन्नता पूर्वक खून से लथपथ मुंह को लेकर अपने पराक्रम को अभिव्यक्त करने माता के निकट गया। मां तो खून देखकर शंकित हो उठी। इस दुष्ट नकुल ने मेरे पुत्र को मारकर खा लिया है। ऐसा सोचकर जल से भरे घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया। फिर बिलखती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर पुत्र को पूर्ववत सोते हुए देखा और पलंग के पास टुकड़े किए हुए सर्प को भी देखा। वो शोकाकुल हो उठी। देव शर्मा जब भिक्षाटन से वापस आया तो पत्नी ने उसे खूब बुरा भला कहा कि भिक्षा के लोभ से उसे पुत्र को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अत्यधिक लोभ का फल सदा कष्टदायक होता है। उसने कथा प्रारंभ की।
1: एक नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में मित्रता थी। दरिद्रता से पीड़ित होकर उन लोगों ने आपस में निश्चय किया।
9: भाइयों, हिंसक पशु से युक्त निर्जन वन में निवास करना अच्छा है। वलकल धारण करना या घास के बिस्तर पर सोना अच्छा है, परंतु दरिद्रता में जीना बड़ा कठिन है।
10: हाँ भाई, कुटुंब जन भी साथ छोड़ देते हैं। अरे आवश्यकता पड़ने पर मित्रगण भी मुंह मोड़ लेते हैं।
11: सच है मित्र, बिल्कुल सच है।
9: इस संसार में मनुष्य धन के बिना प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता।
6: मित्रों, मुझे लगता है धनोपार्जन के लिए हमें कहीं चलना चाहिए।
9: ठीक कहते हो मित्र, ठीक कहते हो।
6: चलो
9: चलो
1: चलो। चलते हुए वे उज्जयिनी जा पहुंचे। वहां क्षिप्रा के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया। फिर भगवान महाकाल को प्रणाम करके वे अभी मंदिर से निकल ही रहे थे कि भैरवानंद नाम के एक योगी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उचित विधि से उस योगी को प्रणाम करके वे चारों उन्हीं के साथ उनके मठ तक गए। वहां पहुंचकर भैरवानंद ने पूछा,
11: भद्र, आप लोग कहां से आ रहे हैं? प्रवासी जान पड़ते हैं, क्या कोई विशेष कार्य से हैं?
9: प्रभु, हम अर्थोपार्जन के लिए निकले हुए हैं। वहीं जाएंगे जहां पहुंचकर या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु को प्राप्त करेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है।
10: हाँ स्वामी जी, पुरुषार्थ से ही मनुष्य के मन के अनुकूल कामनाएं सिद्ध होती हैं। भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है।
9: शरीर को कष्ट दिए बिना अनायास ही सुख की प्राप्ति नहीं होती। आलसी व्यक्ति को लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है।
6: इसलिए आप हम लोगों के योग्य धनोपार्जन का कोई उपाय बताएं। हम कोई भी काम करने को प्रस्तुत हैं।
9: प्रभु, हमने सुना है कि आप अद्भुत शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष हैं। हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं।
11: देखो वत्स, हम तुम लोगों को चार सिद्ध दीपक बनाकर देते हैं। उसे लेकर तुम चारों हिमालय की ओर चले जाओ। वहां पहुंचकर जिस स्थान पर दीपक गिर जाएगा, वहां तुम्हें निश्चित रूप से धन मिलेगा। दीपक गिरने वाले स्थान को खोदकर धन निकाल लेना और लौट आना। ईश्वर तुम्हारा मार्ग मंगलमय करे।
1: सिद्ध दीपकों को लेकर वे हिमालय की ओर प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। कुछ दूर चलने पर एक युवक के हाथ से दीपक गिर पड़ा। उसने उस जगह को खोदा।
6: खोदो और खोदो,
9: यहीं मिलेगा।
6: और गहरा खोदो।
9: देखो देखो, आवाज आ रही है।
12: मित्रों, देखो देखो, तांबे की खान।
6: हाँ, ये तो तांबे के बर्तन है। हाँ, एक खान है तांबे की।
12: आओ आओ, जितना चाहो तांबा ले लो और लौट चलो।
10: अरे मूर्ख, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये तांबा जितना भी ले लो, हमारी दरिद्रता थोड़ी मिट पाएगी। उठो, चलो चलो, आगे चलो आगे।
12: नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहीं से इच्छा अनुसार तांबा लेकर लौट जाऊंगा।
1: उसके लौट जाने पर शेष तीनों युवक आगे बढ़ गए। अभी कुछ दूर गए ही थे कि उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने उस जगह को खोदना प्रारंभ किया। वहां चांदी की खान दिखाई पड़ी।
10: अरे वाह मित्रों, देखो देखो, चांदी ही चांदी।
9: चांदी?
10: आओ आओ, मन भर के चांदी ले लें और लौट चले। आओ
9: भाई, पीछे तांबे की खान मिली थी।
10: हाँ?
9: तुम्हें चांदी?
10: हाँ?
9: तो आगे अवश्य स्वर्ण है।
10: तो
9: हम इस चांदी से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हम तो आगे जाएंगे। चलो।
6: हाँ चलो चलो।
10: अरे तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। आप दोनों जाओ, मेरे लिए तो ये चांदी ही यथेष्ट है।
1: शेष दोनों युवक आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर तीसरे के हाथ से दीपक गिर पड़ा और उसे सोने की खान मिल गई। परंतु चौथा युवक सोने से नहीं माना। उसे लगा आगे रत्नों की खान मिलेगी।
13: अब सुनो मित्र।
6: हाँ बोलो।
13: मित्र मुझे लगता है ये सोना लेकर हम चलते हैं। भाई ये सोना हमारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर कर देगा। मैं तो संतुष्ट हूं भाई। अगर तुम नहीं मानते तो तुम जाओ आगे भाई, मैं तो यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
1: वो युवक अकेला आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर भीषण गर्मी एवं प्यास से व्याकुल होकर लक्ष्य से भटक गया। इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने रक्त रंजित एक व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था।

0: आप कौन हैं? इस प्रकार सिर पर घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे हैं? यदि पास में कहीं जल हो तो कृपया बताने का कष्ट करें, मेरा गला सूख रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये चक्र मेरी ओर क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, नहीं। अरे ये क्या हुआ? अरे मेरे सर पर ये चक्र, ये चक्र हटा दो मेरे सर पर से। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
1: मेरे सर पर भी यह चक्र इसी प्रकार चढ़ गया था।
0: अरे कृपया ये बताइए कि ये कब उतरेगा? मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। अरे ये चक्र हटा दो मेरे सर से।
1: आप ही की तरह जब कोई दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार सिद्ध दीपक लेकर आएगा और बातचीत करेगा, तब ये आपके मस्तक से उतरकर उसके मस्तक पर चला जाएगा।
0: आपको ये चक्र के नीचे कितने दिनों तक बैठना पड़ा था?
1: इस समय कौन राजा राज्य कर रहा है?
0: राजा वीणा वत्सराज।
1: मैं ठीक ठीक समय तो नहीं बता सकता हूँ, किंतु जब परीक्षित राजा थे तब मैं दरिद्रता से पीड़ित होकर सिद्ध दीपक को साथ लेकर इस मार्ग में आया था। यहाँ एक दूसरे व्यक्ति के सर पर यह चक्र घूम रहा था। उससे मैंने इस विषय में पूछा था और ये मेरे सर पर चढ़ गया।
0: मित्र, इस प्रकार चक्र के नीचे बैठकर आपको भोजन और जल किस प्रकार मिलता था, ये भी बताइए।
1: इधर तो कोई नहीं आता। यदि लोभवश कोई आ पड़ा तो वो इसी प्रकार भूख प्यास निद्रा बुढ़ापा और मृत्यु से रहित होकर केवल वेदना का अनुभव करता है।

0: ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। इधर मित्र के अधिक विलंब करने पर स्वर्ण सिद्ध उसकी खोज में चल पड़ा। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब वो दूसरे वन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मित्र खून से लथपथ दुखी होकर बैठा है, आह भरकर रो रहा है और उसके सिर पर एक तीक्ष्ण धार का चक्र घूम रहा है। अपने मित्र की इस स्थिति को देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में पानी भर आया।
1: अरे बड़ी पीड़ा हो रही है।
2: अरे अरे अरे मित्र, ये क्या हुआ?
1: ये सब भाग्य का चक्कर है मित्र।
2: अरे लेकिन ये तुम्हारे सर पर चक्र, ये कैसे हुआ? कारण तो बताओ।
1: अरे क्या बताऊं मित्र, तुमसे विदा होकर मैं बस इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया और ये चक्र।
3: अरे मित्र, तुमको कितना मना किया था, मत जाओ मत जाओ, किंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब बताओ क्या किया जा सकता है। मित्र, तुम शिक्षित होते हुए भी बुद्धिहीन हो। विद्या की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि के अभाव में सिंह को बचाने वाला युवक प्राण खो बैठता है।
1: कैसे मित्र?
3: सुनो, हमारी ही तरह गांव के चार युवकों ने नगर जाने का निश्चय किया। उनमें से तीन विद्वान थे, चौथा विद्वान तो नहीं था परंतु वो लोक व्यवहार में कुशल था। चारों मित्र पूर्व की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर तीनों विद्वानों ने सोचा, ये चौथा तो अज्ञानी है, ये कहीं हमारे धन में हिस्सा तो नहीं मांग लेगा। वे उसे घर जाने को कहने लगे, पर चौथा संग ही चलता रहा। कुछ दूर जाने पर जंगल में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी मिली। तीनों विद्वानों ने उस पर विद्या की परीक्षा करने की सोची। हड्डियां एकत्रित की गईं, उसमें चर्म मांस एवं रक्त का संचार किया गया।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
3: जैसे ही उसमें प्राण संचार की प्रक्रिया शुरू हुई तो चौथा तपाक से बोला,
4: रुक जाओ,
3: तुम एक सिंह को जीवित करने जा रहे हो। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो ये हम सभी को मार डालेगा। उसकी बात सुनकर एक विद्वान बोले, मूर्ख, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं कर सकता। इसे सुनकर चौथा पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीनों विद्वानों ने उस सिंह में प्राण डाले, त्यों ही उठकर सिंह ने उन तीनों को मार डाला। चौथा सुबुद्धि धीरे धीरे पेड़ से उतरा और फिर घर चला गया। इसीलिए हे चक्रधर, मैं कहता हूं बुद्धि विद्या से बड़ी होती है।
0: सच, शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ रहने वाला व्यक्ति उसी प्रकार उपहास का विषय बनता है जैसे वो मूर्ख युवक बना था। श्रोतागण, अब मूर्ख युवक की कथा स्वर्ण सिद्ध ने चक्रधर को सुनाई, पर हम ये कथा सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार की भोजशाला पहुंचकर मां वाग देवी के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई

0: भोजशाला को माँ सरस्वती यानी माँ वाग्देवी का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। गंगा दशहरा के मौके पर आज जलगंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियों और नहरों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना को और विस्तार प्रदान करेगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये हो गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। नौतपा शुरू होने के पहले ही आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। और IPL का पहला क्वालिफायर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा। श्रोताओं, बुजुर्गों की दवाओं का सुरक्षित प्रबंधन बहुत जरूरी है क्योंकि गलत दवा गलत समय या गलत मात्रा में लेने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दवाओं के सुरक्षित प्रबंधन के लिए हमें मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे दवाओं की सूची बनाएं, सभी दवाओं के नाम मात्रा समय और डॉक्टर का नाम लिख कर रखें, समय पर दवा दें, दवा बॉक्स या फिर मोबाइल अलार्म का उपयोग करें ताकि कोई भी खुराक ना छूटे, डॉक्टर्स की सलाह के बिना दवा ना बदलें, दवा बंद करना मात्रा बदलना या नई दवा जोड़ना केवल डॉक्टर की सलाह से करें, एक्सपायरी डेट ज़रूर जांचें, पुराना या एक्सपायर दवाएं तुरंत अलग करें और सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। यदि आप अपने घर पर किसी बुज़ुर्ग को दवाई देते हैं और उन्हें चक्कर अत्यधिक नींद एलर्जी या फिर कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, नियमित जाँच करवाएँ। उम्मीद है इन बातों को अपनाकर आप बुजुर्गों की सेहत का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। अब माहौल को थोड़ा सा सुरीला बनाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो गया है भेंट वार्ता का। अब आपको सुनवाते हैं डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव विषय पर डॉक्टर प्रीति मोतियानी से मनीष गजभिये की ये बातचीत।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजभिये। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी इस समय अपने चरम पर है, और गर्मी में होने वाली जो सबसे बड़ी या कहे कि आम बीमारी है वह है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन्हीं विषयों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रीति मोतियानी जी को। आप MD मेडिसिन हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी, धन्यवाद।
1: प्रीति जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और यह किन कारणों से होता है।
2: आप सभी को मेरा नमस्कार। जब हमारे शरीर से निकलने वाले जो तरल पदार्थ की मात्रा ग्रहण किए गए पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इस मौसम में फूड पॉइजनिंग बहुत देखने को मिलता है, उल्टी, दस्त के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने लगता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी में जो हम कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे कि शरीर में अत्यधिक पसीना आने लगता है और कम पानी का सेवन करने की वजह से भी डिहाइड्रेशन होने लगता है। दूसरा, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर है, जिनका शुगर बढ़ा रहता है अक्सर, उन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है।
1: जी, तो प्रीति जी, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा आखिरकार बढ़ क्यों जाता है?
2: क्योंकि गर्मी में जो शरीर का तापमान रहता है उसको नियंत्रित रखने के लिए हमें पसीना ज्यादा आता है, जिससे पसीने के द्वारा पानी और साथ में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा चीज ये है कि हमें प्यास नहीं लगती है तो हम ज्यादा पानी भी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। बाहर कई बार जो धूप में लोग काम करते हैं उन्हें ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस होने लगता है शरीर से। और कई बार हम गर्मी के मौसम में चाय कॉफी का सेवन करते हैं, जो कि एक नेचुरल डायुरेटिक होता है, यानी कि शरीर से पानी को बाहर निकालता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और इस मौसम में दस्त उल्टी भी देखने को ज्यादा मिलते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का एक मुख्य कारण होता है। जो कि
1: जी मैम, ये भी देखा गया कि अक्सर जो शरीर में पानी की कमी जो होती है उसके हम शुरुआती लक्षण किस प्रकार पहचान सकते हैं?
2: इसका सबसे जो पहला संकेत होता है वो है जैसे कि मुंह का सूखना या फिर ज्यादा प्यास लगना। कई बार मुंह में चिपचिपाहट महसूस होना, होठों में एकदम से ड्राई और क्रैक टाइप का आना होठों में, पेशाब का कम होना या पेशाब का रंग गहरा या ज्यादा पीलापन होना, या कई बार पेशाब में जलन महसूस होना, अचानक से बहुत कमजोरी होना, थकान होना, एनर्जी कम लगना, कई बार एक टर्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेन फॉगिंग, जिसमें पानी की कमी से सडनली पेशेंट को चक्कर आने लगता है, हेडेक बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं इसके, हीट स्ट्रोक के।
1: और किसी को भी किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य हो जाता है, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: ज्यादा गर्मी की वजह से यदि व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगे या फिर वो अजीब तरीके की बातें करने लगे, कंफ्यूजन में आने लगे, या सडनली बेहोश हो जाए, या उसको एकदम से झटके आने लगे, या उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाए, 104 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए
1: जी।
2: या फिर उसकी जो त्वचा है वो बिल्कुल सूखी पड़ने लगे, ड्राई होने लगे, पसीना एकदम निकल जाए पूरे शरीर से, या फिर बहुत ज्यादा उल्टी दस्त होने लगे, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ऐसे केसेस में।
1: जी। और तेज गर्मी में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए?
2: देखिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। जैसे प्यास नहीं हो तो भी हर 1 से 2 घंटे में थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें। यदि आप घर के बाहर काम करते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ORS या नींबू शिकंजी या कुछ ऐसी छाछ, फलों का रस या नींबू पानी वगैरह का सेवन करते रहें। हमेशा गर्मी में ध्यान रखें कि हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और अपने सर को स्पेशली ढक के रखें, टोपी या छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कैफीन है, चाय है, इनका सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता
1: जी,
2: है।
1: जी। और दिन में जैसे पानी की मात्रा की बात करें तो दिन में किसी भी व्यक्ति को कितने मात्रा में पानी पीना चाहिए, या यूं कहें कि क्या पानी पानी पीना ही मात्र काफी है या उसके साथ हम कुछ और भी ले सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, प्यास लगने का आप इंतज़ार ना करें गर्मी में, थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें, कम से कम 10 से 12 ग्लासेस या फिर 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण सिर्फ पानी का कम नहीं होना है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, तो साथ में आप पानी के कुछ नींबू, छाछ, छाछ एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी होता है, ये पेट को भी ठीक रखता है आपके। फलों का रस पीते रहें, नारियल पानी पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं, तो ये आपके पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करते हैं।
1: जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया, जैसा हम सभी जान रहे हैं कि इस समय धूप काफी ज्यादा है, तो धूप में बाहर निकलते वक्त हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है?
2: जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करके निकले, कभी भी खाली पेट घर से बाहर ना निकले, और हमेशा अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर रखें जिससे आप थोड़ा थोड़ा पानी का सेवन करते रहें। अपने सर को हमेशा ढकें, आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमेशा कोशिश करें कि 12 से 4 के बीच आप घर से, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, और अदरवाइज थोड़ा सा धूप में बाहर निकलना आप अवॉइड करें। और जो कपड़े हैं आपके, सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। आपकी त्वचा का ध्यान रखने के लिए आप कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, सनग्लासेस वगैरह, सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ और फल जो है हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं?
2: कुछ फल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि पानी से भरपूर होते हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, संतरा, दही, योगर्ट, पालक, तुरई की सब्जी, या फिर नींबू पानी, छाछ, ORS, ये तो नेचुरल रेमेडीज हैं, ये हमको पीते रहना चाहिए।
1: जी। और किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए?
2: परहेज की बात करें तो ज़्यादा मिर्ची और मसालेदार खाना, जैसे कि समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब का सेवन से बचे, क्योंकि ये शरीर में, पेट में गर्मी पैदा करते हैं और एसिडिटी का रिस्क भी बढ़ा देते हैं। फिर जो कैफीन, अल्कोहल वाले पदार्थ होते हैं, या ज़्यादा जो चीनी वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको पीने से बचें, क्योंकि ये शरीर से पानी की मात्रा ज़्यादा निकालते हैं। और तीसरा हो गया, जैसे ज़्यादा गर्म पदार्थ होते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, ज़्यादा फैट वाला फूड हो गया, अदरक लहसुन हो गया, ये सब शरीर में ज़्यादा एसिडिटी बनाते हैं, और इनको पचाने के लिए हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है।
1: जी। मैम, जैसा हम लोग अक्सर जानते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग है वो काफ़ी जल्दी इससे ग्रसित हो सकते हैं, तो उन्हें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: जी, बच्चों और बुजुर्गों में जो रहता है, प्यास का एहसास बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें बिना मांगे हर घंटे में पानी देते रहें, पानी के साथ साथ उनको ORS या फिर जूस भी देते रहें, उन्हें बिल्कुल सीधी धूप में रहने से बचाएं, धूप में बाहर ना जाने दें, और घर में भी एक पंखा और कूलर जैसा ठंडा वातावरण बनाए रखें, कभी भी उनको बंद कार में अकेला ना छोड़े, क्योंकि ऐसे में उनको डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा।
1: जी, बहुत उपयोगी जानकारी, और निश्चित तौर पर आपकी जो जानकारियां है हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। अब डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को लू या हीट स्ट्रोक लग जाए तो तुरंत उसे क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए?
2: तुरंत यदि किसी को हीट स्ट्रोक लग जाए तो सबसे पहले उसके शरीर का हमको जल्दी से जल्दी तापमान कम करने की ज़रूरत होती है। 30 मिनट के अंदर हमको उसका तापमान कम करना है, नहीं तो वो बेहोश भी हो सकता है, उसको झटके भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले पीड़ित को तुरंत धूप से हटाकर किसी ठंडी छायादार जगह पर ले जाएं, और पंखे के माध्यम से या हाथ के माध्यम से उसे हवा करें, शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। उसके लिए आप एक गीली चादर या तौलिए से शरीर को ढक सकते हैं, या फिर कुछ बर्फ के पैक्स आते हैं, आइस पैक्स, उसको उनके गर्दन या हाथों के नीचे रख सकते हैं, और यदि वो होश में है, बेहोश नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा पानी या ORS पिलाएं। यदि बेहोश है तो बिल्कुल भी उसको कुछ भी पीने के लिए ना दें, तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको एडमिट करवाएं और उसको डॉक्टर को दिखवाएं।
1: जी, निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो क्या उसमें डिहाइड्रेशन के खतरे को भी ये बीमारियां जो है वो बढ़ाती है?
2: जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों में बार बार पेशाब आने के कारण पानी की कमी जल्दी होने लगती है, इससे उनकी नसें और ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरे जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज हैं, उनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जैसे हम वाटर पिल्स कहते हैं, जो कि शरीर से पानी निकालने का काम करती हैं, तो ऐसे में उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है।
1: जी मैम, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेगी हमारे श्रोताओं को, ताकि वे गर्मी और डिहाइड्रेशन से सुरक्षित रह सके?
2: जी, गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। याद रखें कि आपका शरीर जो है एक मशीन की तरह ही है, जिसे ठंडा रखने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है। तो घर से निकलते समय पानी पीकर निकलें, अच्छा नाश्ता करके निकलें, और अपने आसपास जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका आप खास ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। और दूसरी चीज यह है कि यदि किसी को हीट स्ट्रोक या लू लग रही है तो उसको बुखार या इन्फेक्शन समझ के पैरासिटामोल ना दें, क्योंकि पैरासिटामोल से इसका खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो हीट स्ट्रोक है वो आपके शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से, ना कि इन्फेक्शन की वजह से।
1: जी, निश्चित तौर पर हम अपने श्रोताओं को यही कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें जरूरत है तो थोड़े एहतियात बरतने की। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें उपाय बताए हैं, उन उपायों को अपना कर निश्चित तौर पर हम डिहाइड्रेशन और गर्मी से अपना स्वयं का बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता डिहाइड्रेशन और गर्मी से बचाव विषय पर डॉक्टर प्रीति मोतियानी से मनीष कचभिये की बातचीत। आशा करते हैं आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। श्रोताओं, सेहत की बातों और मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। इसी क्रम में हम बात करेंगे डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के बारे में। ट्विन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी वास्तविक वस्तु, मशीन, सिस्टम या प्रक्रिया की डिजिटल कॉपी बनाई जाती है। ये डिजिटल मॉडल वास्तविक वस्तु से लगातार डेटा प्राप्त करता रहता है और उसी के अनुसार अपडेट होता रहता है। और यदि इसे आसान शब्दों में समझना चाहें तो किसी वस्तु, मशीन, सिस्टम या प्रक्रिया का लाइव डिजिटल रूप डिजिटल ट्विन कहलाता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री की मशीन है, मशीन में सेंसर लगे हैं, उसका डिजिटल ट्विन कंप्यूटर में बना है। अगर मशीन गर्म होने लगे तो डिजिटल ट्विन पहले चेतावनी दे देगा, इससे मशीन खराब होने से बचती है, समय और पैसा भी बचता है। इसका उपयोग मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। बीमारी की निगरानी, सर्जरी की योजना, व्यक्तिगत उपचार हेतु डिजिटल ट्विन के फायदे भी हैं। मशीन खराब होने से पहले पता चल जाता है, रखरखाव का खर्च कम होता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है, समय की बचत भी होती है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक और मधुर गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है हेल्थ टिप्स का। जैसा हम सभी जानते हैं कि गर्मी अपने चरम पर है, तो ताजे फल हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें, पानी और जूस की मात्रा बढ़ाएं, इससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी और साथ ही योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को। स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है।

0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रमा मिश्रा के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है। इनके स्वर में सबसे पहले आप सुनेंगे देवी गीत, उसके बाद गारी और फिर दादरा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रमा मिश्रा के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ भक्ति रचनाएं सुनवाने जा रहे हैं। गायिका हैं पुष्पा रानी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुष्पा रानी के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है।

0: समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़ ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
4: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत ज्वेल थीफ फिल्म से हमने लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन।

आराधना फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। एसडी बर्मन का संगीत है, गीतकार आनंद बख्शी, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य अतिथि में धार में प्रदेशव्यापी जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आज धार की भोजशाला में मां वागदेवी पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जन समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्थानीय कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट निर्माण जैसे जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत नीमच के हाथी मंदिर घाट पर साफ सफाई के लिए श्रमदान किया गया। वहीं अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर और रायसेन सहित प्रदेश के सभी जिलों में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल किए जाने का निर्देश दिया है। भोपाल में राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आज आयोजित स्कॉलरशिप वितरण समारोह में दो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। डॉ. यादव ने छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हजारों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। कल यानी रविवार को खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे। यहां पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में 42.7, ग्वालियर में 44.1 और जबलपुर में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। इस वर्ष की हज यात्रा में भारत से लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के गौरव दिवस पर आज माँ नर्मदा के घाट पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज पेयजल समस्या, खाद वितरण, उपार्जन की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नरेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और

0: क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। कहिए दोस्तों, कैसे हैं? हमें मालूम है कि आप सभी सकुशल होंगे, लेकिन तेज गर्मी से तो हम सभी परेशान हैं। तो इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और ये जो तपिश भरी दोपहरी है, इसमें हमारी तरफ से गीतों भरी एक छांव स्वीकार कीजिए। आज के इस सुरीले सफर में आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। लेकर उपस्थित हूँ कुछ खूबसूरत से गीत आपकी फरमाइश पर। सबसे पहले श्रोताओं के नाम बताती हूँ, उसके बाद गीत की डिटेल। ये खत आया है जिला खंडवा मध्य प्रदेश मोटक्का माफी से। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम की भी यही फरमाइश है। नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और ये चिट्ठी आई है छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। आप सबने सुनना चाहा है नीला आकाश फिल्म का गीत। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। मैं एक लम्हे में दुनिया समेट सकता हूँ, तो कब मिलेगा मुझसे एक पल लिख दे।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। अब्दुल्ला फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र और प्रेमाबाई। ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु भारतीय। इसी गीत को पसंद करते हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी और मिथिल नाचानी, और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। ये खत आया हुआ है धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अनुपमा यादव का। इसी गीत को पसंद करते हैं दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। और ये चिट्ठी आई है आमा खोड़रा कबीरधाम से, लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा, दक्षप्रिया नेताम और सनोतिया गुना से मांगीलाल चंदेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अब चिरागों की ज़रूरत ही नहीं, चांद इस दिल में छुपा हो जैसे, जी में आता है सजदा कर लें, दिल की आवाज़ खुदा हो जैसे।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की पसंद पर है। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। ग्राम सौगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं दीपक कुमार, रोशन, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिलदा से प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया रानी, ओशीम कुमार और सोमेन कुमार चंद्र। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मिली फिल्म में किशोर कुमार को। गीत लिखा है योगेश ने और संगीत एस डी बर्मन का है। कहीं पलकें ओस से धो गई, कहीं दिल को फूलों से भर गई। तेरी याद सोलह सिंगार है, जिसे छू दिया वो संवर गई।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है बहू बेगम फिल्म से। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं, बोल साहिल लुधियानवी के और धुन रोशन की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पीपरपारा मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। सोनुआ झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और नंदू महतो। और घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट न हो दर पे मेरे और तू आए।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सबकी है। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवी शंकर तामुरिया, अजय रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं वर्मा मलिक का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है कर्तव्य। अनुरोध आप सबका है, सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव, निम्बालकर और संदीप पाटिल, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी और मनन, साथ में है तानिया। देख मोहब्बत का दस्तूर, तू मुझसे मैं तुझसे दूर, दिल की धड़कन कहती है आज कोई आएगा जरूर।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार की भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई को भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। अदालत ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। गंगा दशहरा के मौके पर आज जलगंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रदेश भर में कुएं, तालाब, बावड़ियों और नहरों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना को और विस्तार प्रदान करेगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। और नौतपा शुरू होने के पहले ही दिन आज मौसम विभाग ने 44 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू चलने का अलर्ट है। विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 6:30 और रात 8:15। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन सुनिए 6:45 पर। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आपकी फरमाइश। प्रसारण समय रात 10 बजे और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित राम स्वरूप रतौनिया का तबले पर बजाया झपताल। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी, एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि, इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं
2: जी। हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल, आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी, तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है, तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी,
2: जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं
1: जी।
2: लेकिन ये खाने वाला रसिया है,
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है,
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित, कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।

0: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई, हाथ में पाटा ले

0: लेकर। वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिसरानी, ये हुआ कब?
2: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
3: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
3: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
4: किया जाए? हरे कृष्ण।

0: सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण
1: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
0: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण, रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण
3: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे।
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
1: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
3: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,
0: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण
2: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
2: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए
2: अच्छा
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा।
2: हो
0: सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
2: ऐसा?
0: हरे कृष्ण
4: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में

0: होश आई और सब लोग चौंक उठे।
1: अरे अम्मा जी, हाँ? तो
2: क्या हुआ, बोलो तो।
1: अरे हुआ का, बताओ
2: क्या बताए
1: अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
3: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और
1: हाँ,
0: पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया,
1: अब तो
0: देखो
1: मान
0: रूठा ना
1: ही गए
0: करो, अब तक
1: होंगे।
0: मान गए होंगे।
1: जी हाँ,
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला, की क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
0: जी
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता, शरीर के
1: बिल्कुल।
0: बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और
1: हाँ।
0: फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है। संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तिथि को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत ज़रूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो
1: बिल्कुल।
0: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी
1: बढ़ती
0: हाइट
1: है।
0: भी इससे बढ़ती है।
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है, क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है, क्योंकि पूरा
0: बिल्कुल।
1: उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल, भी देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है। जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
1: अच्छा।
0: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे
1: इस
0: अपने
1: खेल
0: घर
1: की
0: में।
1: कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा इसमें खेलने
0: इतनी
1: में स्ट्रेंथ।
0: कैलोरीज यहाँ पे
1: बिल्कुल
0: खत्म कर दी जाएंगी। जी
1: जी।
0: बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात है।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर
1: बिल्कुल।
0: झुकाकर जीत स्वीकार
1: कहते हैं ना,
0: करो और
1: जिस
0: हार
1: पे
0: जाओ।
1: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता
0: हाँ
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: जिस
0: सही
1: पे
0: बात
1: कुछ
0: है।
1: नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है ये।
0: बहुत बढ़िया चीज़ है ना, देखिए बेटियाँ भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती
1: बिल्कुल।
0: को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत
1: बढ़ेगी
0: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रखें कि

0: वो गोल कर देगा।
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल
1: तो जब
0: होता है।
1: संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
0: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी ना किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर
1: बिल्कुल
0: रहे
1: सही
0: होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे ज़मीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये
0: जी
1: खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
1: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
0: बड़ा लगता है कि ये भी वो पल हैं जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज़ खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
1: और आरती एक चीज़ और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पूड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
0: जी हाँ, और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
1: जी बिल्कुल, और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
0: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीज़ें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये ज़रूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
1: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
0: क्या
1: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
0: सबसे पहला काम,
1: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतः जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए। ये तो,
1: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये सही कहा,
1: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
0: जरूर
1: होना चाहिए।
0: और एक मैं श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए, सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत ज़रूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा आराम

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं
1: घूमने
0: घूमने जाना
1: जाना
0: है।
1: ठीक है। तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है।

0: मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल,
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही, हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती, और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहाँ के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना
1: बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब
1: अच्छा।
0: हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में, बोलते थे हम,
1: हाँ,
0: उस
1: सहूलियत
0: जगह
1: से
0: पे
1: एकदम
0: जाके
1: सही चीज रखा रहता
0: जी
1: था।
0: रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे, और
1: सही
0: वो
1: बात है,
0: समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मज़ा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज़ में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता
1: बिल्कुल
0: है,
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत
1: बिल्कुल
0: बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही
1: बिल्कुल,
0: योजना से करो,
1: ताकि
0: बड़ा
1: आपका
0: आनंद
1: सफर
0: आएगा।
1: अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है, क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ, बड़ा
1: अच्छा,
0: आनंद आता है
1: सच में अच्छा लगता होगा, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता
0: जी,
1: है ना तो बहुत बहुत स्वाद
0: बहुत
1: आ जाता
0: आनंद
1: है।
0: आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं पे
1: अरे
0: आया है मज़ा
1: बिल्कुल।
0: अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो
1: अच्छा।
0: घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं, तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए, मोयन डालते समय मोयन
1: अच्छा।
0: डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद हल्की विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल

0: आता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो और वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छान कर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आँच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाएं तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए, और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना
1: बहुत अच्छा
0: खाने के लिए, इतना आइसक्रीम
1: लगेगा।
0: जैसा गले में
1: सच में
0: सूदिंग सूदिंग
1: बाहर की
0: लगेगा।
1: आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना, बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है, ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं अरिस्तान
1: बिल्कुल।
0: के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत।
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है, हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए,
2: टांग दें, हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुँचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है,
1: विधि
2: वी विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे
1: बहुत
2: ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से। और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर
1: जरूर।
0: में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीज़ें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक ग्रंथी होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफ़ी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज़ वाला है इसलिए पतला हो रहा है या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के

0: इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए
0: याराना फिल्म का गाना है,
1: यार।
0: किशोर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं।

0: तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं, हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक

0: फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज़ कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज़ वो किया है
1: सप्लीमेंट?
0: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हज़म नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते होंगे।
0: हाँ मेरे पास ज़्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
1: जी
0: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
0: हाँ
1: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
0: हाँ
1: है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या-क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है। काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे
1: हाँ,
0: बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: निदान
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी,
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो

0: सेल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
1: अच्छा,
0: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
1: अच्छा,
0: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा,
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग, प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
0: पॉजिटिव
1: जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
0: हाँ,
1: जो होता
0: रेंज
1: है
0: के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
0: अगर
1: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
0: जैसे
1: दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
0: हाँ,
1: लेवल क्या है
0: लेवल
1: बीमारी
0: क्या
1: का।
0: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज़्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन एंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि डायबिटीज़ में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर लें या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
0: जी
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो
0: चिकित्सा
1: चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाती है।
1: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ अपनी चर्चा को आगे।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है?
1: हिस्ट्री क्या है इसमें आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे
0: हो जाती
1: घातक
0: है।
1: होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं,
0: जी
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक

0: फिजिकल,
1: जी
0: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
1: जी जी
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान
1: गुस्से
0: लाल
1: से
0: होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है,
1: जी
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान,
1: जी
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक,
1: फोबिया
0: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है, होती है, क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा आया तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है, अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है, उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ़ बनाते, ऑल इज़ वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
1: जी
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल
0: फिजिकल, उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना
1: वो सारी
0: फलाना,
1: विषैली चीजें
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीज़ें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज़ अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीज़ें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया।
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं,
1: जी
0: और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री,
1: जी
0: ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का?
0: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटी कैरेक्टर।
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती हैं,
1: जी
0: उनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आगे में, आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखें, अगर है तो उसको ठीक करें, अगर नहीं है तो उसको होने ना दें, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज़ तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिक

0: निकल रहा है, जितने टॉक्सिंस बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा
0: बैजू बावरा।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना ज़रूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना ज़रूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना।
1: पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा, तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी
0: एक
1: है,
0: इंडिकेशन होता है
1: एक
0: उसमें।
1: इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी
1: आयोडीन का
0: मेहनत करने पे ही वो थक जाता है।
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट
0: जी
1: इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है, तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके, और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल।
0: जी
1: आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा,
0: मायूस।
1: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज़ पे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया, तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज़ बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: है, क्योंकि जैसे ही आप, थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
1: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है,
0: जी
1: ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
0: जी
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
0: जी जी और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
0: कोई भी मौसमी एक जो फल
1: मौसमी
0: है वो खाना
1: खाना,
0: चाहिए।
1: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज़्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूँगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊँगी?
0: बहुत प्रेशर
1: नहीं।
0: पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
0: ओहो,
1: यस,
0: क्या बात।
1: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
0: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
1: ज़रूर।
0: रखना। और

0: और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
1: उतना ही है।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो
1: बड़ी
0: चाइनीज़ फूड में
1: खतरनाक
0: ज़्यादा
1: है।
0: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है आपने।
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
1: हाँ, कम
0: इतना तो
1: कर
0: कर ही
1: दीजिए।
0: सकते
1: मैं ये
0: जी।
1: भी नहीं बोलूँगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल।
1: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
0: जी
1: मन
0: जी
1: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज़ होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
1: एक
0: चलते
1: अच्छा सा
0: चलते।
1: गाना, चलते चलते मैं हूँ।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं।

0: हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपियंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमैन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर, हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्ड टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया।

0: Sri Kotak has played an important role in defining and developing India's banking and financial sector over four decades, and he leads several key bodies, serving as co-chairman of
1: Professor
0: the Indo-UK Financial
1: Vijay
0: Partnership.
1: Kumar Malhotra, Marnopurant, Lok Karya, unke putr Shri Ajay Kumar Malhotra.
2: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
0: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palniswamy, Chikitsa Gastroenterology.
2: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
0: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
0: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
2: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
0: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
2: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
0: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
2: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
0: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He
1: Sushri
0: got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर साहित्य एवं शिक्षा।
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
0: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri कुमार बोस कला तबला।
2: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
0: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
1: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
0: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
0: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट। She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले
2: 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
1: श्री तेची गुबिन समाज सेवा।
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security
1: needs. Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी के एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
1: Shri Ghafruddin Mewati Jogi Kala Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस. हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज.
1: श्री हाजी कासम कला ढोलक.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं. आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स. He has also received many state level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं.
0: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
2: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन कितना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है. सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: As Commissioner of Chennai, श्री के विजय कुमार reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG law and order, he strengthened public safety
1: strategies. Shri Rang Devva Lad, Dada Lad, Krishi.
2: देवालाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्री रंग देवालाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला कंथा एम्ब्रॉयडरी।
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड

0: श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
0: Shri
2: been supplied to the
0: Pajanivel Khel Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
1: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
0: Deepika Reddy, Kala Nritya.
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा, oncology.

0: जी
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners.
0: श्री हरिचरण शाइकिया कला सत्रिया नृत्य।
1: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
2: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
1: 86 साल के शास्त्री जी,
0: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
0: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
1: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी
0: टैलेंट। श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
1: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिवशंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली एकेडमिक एक्सेलेंस। शी वाज आल्सो सिलेक्टेड एज द वुमन ऑफ द ईयर 2000 बाय द इंटरनेशनल वुमेन्स एसोसिएशन। She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: Sridhar ji, आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
2: Dr. Sridhar is in association with the National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, developed the longest radio science serial for children titled The Human Evolution, Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manat professor hain. Sankramak rogon khas taur par visceral leishmaniasis Kalazar mein aapne बहुत कार्य किया है.
2: Professor Sundar is ranked at the top in the world in the field of leishmaniasis and kalaazar from the year 2013 to date. He has published extensively in academic journals including NEJM and
0: Dr.
2: The Lancet,
0: S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
0: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
1: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
2: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
0: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
1: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेधन भी आगे बढ़ाई है.
2: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
0: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
1: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी.
2: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज.
0: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर.
1: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज़्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है. काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है.
2: Sri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
0: Professor
2: very adaptable.
0: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
1: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है.
2: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस. He has published about 200 papers in leading journals.
0: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
1: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है. खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है.
2: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
0: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
1: Gambir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
2: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
0: Shri Halley War, Samaj Seva.
1: Abbari, Halley War ji ki aap paryavaranvid aur khasi logon ke swadeshi gyan ke liye ek pratishthit naam hai.
2: Shri Ward has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए. धन्यवाद महोदय.

0: And we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवा रहे थे हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं

0: साथ मिले।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए गए। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार में सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में LPG का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और IPL का पहला क्वालिफायर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है।

0: है, साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
0: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।

शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं
2: अजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है।

0: जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
1: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथ गोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
0: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो अब अभ्यास शुरू करते हैं।
2: जी सर।
0: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
2: जी जनाब।
0: हाथ गोला हाथ में लो।
2: ले लिया जनाब।
0: अब पिन रिलीज करो।
3: फेंको।
2: फेंका जनाब।
3: अरे अरे ये क्या हुआ,
4: ये क्या हुआ?
5: अरे बचो बचो बचो,
3: फट जाओ,
5: फट जाओ, फट जाओ,
3: जमीन पे लेट जाओ,
5: धुआं निकल रहा है,
3: धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा
6: है। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
7: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
7: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
8: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
9: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
10: सही में
9: बहादुर सैनिक हो तुम।
6: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
11: May I come in, sir?
8: Yes, come in.
11: Sir.
8: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
11: सर।
8: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
11: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
8: हाँ हाँ, कहो।
11: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
8: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
11: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
8: गो अहेड यंग मैन।
11: सर।
6: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
7: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
6: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
7: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
12: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर,
0: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
12: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके

0: उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
1: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक बार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9

0: 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी, ध्वनियांकन मयंक कुमार, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये प्रसारण आकाशवाणी जबलपुर से किया गया। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुने लोक संगीत। लोक संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शिवचरण पटेल के गाए बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनके स्वर में सुनिए ये पारंपरिक लोक भजन।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शिवचरण पटेल, इनके गाए बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रोताओं, यहां सुनिए एक आवश्यक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। इस पुरस्कार की 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जा रहा है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छुपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in इस वेबसाइट को एक बार फिर सुनिए awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किया जाएगा। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई और लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए शिवचरण पटेल और साथियों के स्वर में सुनते हैं ये पारंपरिक लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हमने आपको शिवचरण पटेल के गाए बुंदेली लोकगीत सुनवाए। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है जैव विविधता, प्रकृति का अमूल्य खजाना, मानव जीवन का आधार। आलेख है रवि अवस्थी का, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

प्रकृति ने पृथ्वी को अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पर्वतों, नदियों और जंगलों से समृद्ध बनाया है। यही विविधता पृथ्वी पर जीवन को सुंदर, संतुलित और जीवंत बनाती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव विविधता एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्य शब्दों में जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है। इसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके आनुवांशिक गुण, उनके निवास स्थान शामिल होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का आधुनिक युग विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भले ही अत्यधिक विकसित हो गया हो, लेकिन विकास की इस दौड़ में प्रकृति को गहरे संकट में डाल दिया गया है। मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अनेक जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। जैव विविधता को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का अर्थ एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक अंतर से है। उदाहरण के लिए धान, गेहूं या आम की विभिन्न किस्मों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ये विविधता जीवों की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता प्रदान करती है। जैव विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियां खाद्य श्रृंखला तथा पारिस्थितिक चक्रों को संतुलित बनाए रखते हैं। यदि किसी एक प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाए

0: तो उसका प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। अनेक औषधियाँ पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा दोनों ही जैव संसाधनों पर आधारित हैं। तुलसी, नीम, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसे पौधे औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वहीं कृषि, मछली पालन, वानिकी और पर्यटन जैसे अनेक व्यवसाय जैव विविधता पर ही निर्भर हैं। वर्तमान समय में जैव विविधता अनेक खतरों का सामना कर रही है। औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण और कृषि विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। जलवायु और भूमि प्रदूषण ने अनेक जीवों के जीवन को प्रभावित किया है। नदियों में छोड़े जाने वाले रासायनिक अपशिष्ट जलीय जीवों के लिए अत्यंत गंभीर संकट बन चुके हैं। ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वनों की कटाई रोककर अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। औद्योगिक अपशिष्टों को नियंत्रित कर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात की जाए तो यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, घने वनों और वन्य जीवों से समृद्ध राज्य है। जैव विविधता की दृष्टि से यह देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन, पर्वत, नदियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं जो इसे जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। राज्य की भौगोलिक विविधता यहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को विशेष पहचान प्रदान करती है। मध्य प्रदेश का लगभग एक तिहाई भाग वनों से आच्छादित है। यूनेस्को ने राज्य के 3 जैव मंडल अभयारण्यों को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया है। इनमें पचमढ़ी, अचानक मार अमरकंटक और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। निस्संदेह जैव विविधता प्रकृति की वह अमूल्य धरोहर है जिस पर संपूर्ण मानव जीवन निर्भर करता है। ये केवल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का आधार है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता और भविष्य की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सुनिएगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रायसेन जिले से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन बावड़ियों, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जिले की सभी 520 ग्राम पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और गहरा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। पेश है रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की यह रिपोर्ट।
1: रायसेन जिले में जल गंगा अभियान के तहत प्राचीन बावड़ियों, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य अत्यंत तीव्र गति से जारी है। रायसेन जिले की सभी 520 ग्राम पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और गहरा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इसी कड़ी में रायसेन जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने ऐतिहासिक पूरन तालाब पहुंचकर स्वयं श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण केवल शासकीय दायित्व नहीं है, यह एक पवित्र सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर वर्ग और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है, तभी हम अपने जल स्रोतों को जीवित रख पाएंगे। अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े इस जन आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता की पुष्टि करते हैं।

0: जिले ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में तय लक्ष्यों को पार कर लिया है। दूसरे चरण के तहत कुआं, बावड़ी और तालाबों की साफ सफाई व गहरीकरण का लक्ष्य 112 निर्धारित था, जिसके मुकाबले 116 स्थलों पर काम करके 100% सफलता हासिल की है। इसके साथ ही नदी तटों के गहरीकरण का कार्य भी लक्ष्य से काफी आगे निकल चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल चेतना जगाने के लिए जन अभियान परिषद द्वारा प्रभात फेरी, कलश यात्रा, जल स्रोत पूजन, जल चौपाल और बड़े पैमाने पर नारा लेखन जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां नारा लेखन का लक्ष्य 175 था, वहीं ग्रामीणों के उत्साह से 400 से अधिक स्थानों पर दीवार लेखन किया जा चुका है। प्रशासनिक मुस्तैदी और जन भागीदारी के इस सुंदर समन्वय ने रायसेन में जल संरक्षण की एक नई अलग जगाई है। इसके अलावा रायसेन जिले के शहरी क्षेत्रों में भी श्रमदान व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने बताया कि
1: ये कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और मैं कहूँगा पूरे राष्ट्र में चल रहा है, इसकी आवश्यकता भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने छह वर्ष भी और इस वर्ष भी सह अभियान को हाथ में लिया है और गुड़ी पड़वा से लेकर कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम 30 जून तक इसको चलाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता है, पानी को बचाना, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी लोगों को पीने का मिले, जमीन के अंदर पानी का संग्रहण हो, हमारे जो तालाब है, बावड़ियां, उसका संग्रहण होगा जल का, तो इससे हमारे बाकी साधन संसाधन भी रिचार्ज होंगे, पानी की उपलब्धता बनी रहे। पानी का लगातार शोषण और दोहन होने के कारण एक जमाने में विद्युतीकरण नहीं था तो पानी बहुत कम उपयोग कर पाते थे। विद्युतीकरण का हमारे सिंचाई के साधन बढ़े हैं और प्रकार का भी काम हुआ है, हमारे पहले मकान कच्चे होते थे, पक्के मकान बने, कई प्रकार के पानी का दुरुपयोग कह सकते हैं या उपयोग बढ़ा है, इसलिए पानी के एक एक बूंद बचाना, जल है तो कल है, ये धारणा सबने व्यक्त की है, ये पानी की हर बूंद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
2: हमारी दूसरी खबर है सतना जिले से। यहाँ खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। यह कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभागों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 16 मई को 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ विकास खंड पंचायत प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों, किसानों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कृषि रथ के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को ई टोकन, उर्वरक वितरण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कीट और रोग प्रबंधन, फसल विविधीकरण, कृषि यांत्रिकीकरण, पराली प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपायों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से खेत समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर जिले से। जिले में सिंगरी नदी के उत्थान और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नदी के उद्गम स्थल से लेकर जहां जहां से नदी बह रही है, सभी रास्तों पर ठोस और तरल कचरे के निपटान के इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन।
4: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नदियों को संरक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल का आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर शहर में बहने वाली सिंगरी नदी के अस्तित्व को बचाने और उसके संवर्धन के लिए सिंगरी के उद्गम स्थल से लेकर उसके शहर में होते हुए आगे जाने के सभी रास्तों को बेहतर दिशा देने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सिंगरी नदी जिन जिन गाँवों से होकर गुजरती है वहाँ ठोस और तरल प्रकार के कचरे के प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर जिले के अपर कलेक्टर गजेंद्र नागेश।
5: इस वर्ष हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो मगरधा, रोसरा और नकटुआ, इसके साथ ही खमतरा और रानी पिपरिया, इनमें हमने इस चुनौती को और इस समस्या को पहचान कर कि वास्तव में नदी के लिए तकलीफ क्या है, क्या उसका कम होता हुआ पानी, क्या बहुत सारी गाद मिट्टी का इधर उधर भर जाना, क्या उसके तटबंधों का नुकसान हो जाना, या उससे भी ज्यादा बात ठोस और तरल अपशिष्ट जो स्थानीय निवासियों द्वारा वेस्टित किया जाता है। तो हमारा आकलन इसमें यह है कि इन सारी समस्याओं को हम कैसे एड्रेस करें। हमने लगभग 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र में और उसमें भी स्पेसिफिकली लगभग 650 मीटर की परिक्षेत्र में, जिसको हम मगरधा, नकटुआ, रोसरा का संगम बोलते हैं, वहां पे हमने नदी का कोर्स करेक्शन किया है। नदी की गहराई के साथ साथ चौड़ाई भी लगभग ऑन एवरेज हमने 20 मीटर के आसपास किया। वैसा करिए जैसा नदी अपने पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं करती है या करना चाहती है, उसको हमने वैसा किया। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने

0: कही है कि हम उसका सौंदर्यीकरण, उसको प्लेस मेकिंग की एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम उन बसाहटों के तरल अपशिष्ट को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां से वो नदी में मिलता है, और नदी का जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र बिगड़ता है, वहां के जो पादप होते हैं, पौधे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो जलों का लगातार शुद्धिकरण करते हैं, उनको फिर से कैसे एक्वेटिक लाइफ शुरू हो पाए, यह हमारी धारणा है। हमने 6 जगहों पर ऐसे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट इकाइयाँ स्थापित करना शुरू किया है, और उसके माध्यम से परिकल्पना ये है कि इन लगभग 850 घरों का जो पानी नदी में आता है, मगरधा, रौसरा और नकटुआ जहाँ से शुरू होता है, शहरी सीमा शुरू होती है, तो उनको हम कम से कम ट्रीट करके, एक सेमी ट्रीट करके भी हम सिंगरी नदी में छोड़ेंगे, और उसके वजह से हम ये मानते हैं कि सिंगरी नदी के पुनर्जीवन के कार्य को एक स्थायी आधार मिल सकेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इन सभी गांवों में फोकस करके ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की रणनीति बनाई है, क्योंकि बिना इसके प्रबंधन के हम नदी के संवरण, नदी के सौंदर्य वृद्धि के जैसे कोई भी काम जो करेंगे तो वो कॉस्मेटिक चेंज जैसे होंगे, स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकेंगे। अभी हम लोगों ने नदी में व्यापक स्तर पर पिचिंग का कार्य करना शुरू किया है, और उसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके का जिसके माध्यम से हम समाज को और स्थानीय निवासियों को नदी के किनारे ला सकें और वो उसके सौंदर्य का भी जो है वो लाभ ले सकें।
1: नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
2: हमारी अगली खबर है पन्ना जिले से, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 151 तीर्थयात्रियों और सहायकों का चयन किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
3: बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों का जत्था आगामी 27 मई को द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पन्ना जिले से कुल 191 तीर्थयात्रियों और उनके सहायकों का चयन किया गया है। पन्ना की संवेदनशील कलेक्टर उषा परमार द्वारा श्रद्धालुओं के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने हेतु 20 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों उपस्थिति में ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपादित की गई। इस दौरान उपस्थित जनों के प्रश्नों का समाधान भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया और संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आगामी 27 मई से 2 जून तक की अवधि की तीर्थ यात्रा के संबंध में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी धर्मस्व शाखा अनिल कुमार तलैया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश के परिपालन में तीर्थयात्रियों के आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा पोर्टल में दर्ज कराए गए। इसके अलावा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की गई और नवीन तीर्थयात्री एवं उनके सहायक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि पन्ना जिले से इस यात्रा के लिए कुल 551 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें शासन द्वारा आवंटित बर्थ अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्पन्न रेंडमाइजेशन प्रक्रिया से तीर्थयात्रियों का चयन हुआ। तीर्थयात्रियों का जत्था आगामी 27 मई को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पन्ना से खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगा, जहां से वह द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। अब तक 31,000 से अधिक किसानों से 1,50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 35,213 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। पेश है रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।
4: किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 31,000 से अधिक किसानों से 1,50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 35,213 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित गेहूं में से 1,11,473 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन कराकर सुरक्षित भंडारण करा दिया गया है। किसानों के खाते में अब तक 213 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों से 28 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी इन दिनों विभिन्न खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर द्वारा खरीदी केंद्रों में अपने समक्ष गेहूं की बोरी का तौल भी कराया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
2: हमारी अगली खबर है राजगढ़ से, जहाँ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की पहल पर शुरू हुआ संवाद से समाधान कार्यक्रम जिले में जन समस्याओं के समाधान का त्वरित माध्यम बनता जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं राजगढ़ से हमारे संवाददाता कमल बाबू खस।
5: राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अभिनव पहल संवाद से समाधान कार्यक्रम जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आम जन की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किए जाने से नागरिकों में कार्यक्रम के प्रति विशेष लगाव एवं विशेष विश्वास देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की खास बात यह है कि कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा स्वयं प्रत्येक शिकायतकर्ता से 1-to-1 चर्चा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में समस्या का समाधान सुनिश्चित करते हैं। मौके पर ही निराकरण होने से शिकायतकर्ताओं में प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव मजबूत हो रहा है और इस पहल को अपनी समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम मानने लगे हैं। राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा।
6: माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हितग्राहियों की जो समस्या है वो सर्वोपरि है, उनका निराकरण सर्वोपरि है। इसी के तारतम्य में हम लोगों ने नए प्रारूप में जन सुनवाई कक्ष का निर्माण कराया। ऑनलाइन VC के माध्यम से सभी खंड स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई से जुड़ते हैं, आवेदकों को की समस्याओं को सुनते हैं हम लोग, त्वरित निराकरण करते हैं। इसके साथ साथ TL समाधान में हम लोग हर सोमवार को 5 हितग्राही मूलक शिकायतें जिनका निराकरण लंबे समय से नहीं हुआ है उनको हम लोग लेते हैं। शुक्रवार को इन शिकायतों को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया जाता है और उसका समाधान हम लोग अगले TL में सुनिश्चित कराते हैं। राजगढ़ जिले में जन सुनवाई और हितग्राहियों की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने संवाद से समाधान कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये मंगलवार को हम लोग 5 शिकायतें जो हितग्राही मूलक हैं विभागों को 3 या 4 दिन पहले हम लोग अग्रेषित करते हैं, उन शिकायतों पे निराकरण विभागों से अपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ प्रॉपर जवाब अब इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर जवाब अपडेट करने की कार्रवाई विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
5: समाचार दर्शन के लिए राजगढ़ से कमल खस।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at an investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan also was honoured with Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shanta Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kallipatti Ramasamy Pallaiswamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honoured with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bhil for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy, among others, were also present on the occasion. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a set of strategic portals and initiatives in Mumbai aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing

0: last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: We should please understand the context of these three Fs: fuel, fertilizer and foreign exchange. And the foreign exchange is for purchase of gold. So we need to understand this, and we also should appreciate that the challenges are more external driven. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
0: A Delhi court today convicted Congress leader Alka Lamba in a case related to an assault on police personnel during a protest at the Jantar Mantar in 2024. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pawar convicted Lamba and fixed 5th of June to hear the arguments on Lamba's sentencing. The prosecution had accused Lamba, the president of the All India Mahila Congress, of obstructing police and blocking a public road while holding a protest at the Jantar Mantar on 29th of July 2024. In Tamil Nadu, political developments within the opposition AIADMK took a dramatic turn today as three MLAs belonging to the dissent group led by senior leader S.P. Velumani tendered their resignations from the assembly and joined the ruling Tamilaga Vetri Kadagam or TVK. The resignations were submitted by Maragatham Kumaravel from Madurakatham, Jay Kumar from Perundurai and Satyabhama from Dharapuram. The National Investigation Agency NIA today conducted searches at three locations in Jammu and Kashmir in a terror funding case linked with the banned Jamaat-e-Islami organization. The searches conducted at three locations in Srinagar and Shopian districts of Kashmir led to the recovery of several incriminating financial documents and electronic gadgets suspected to be related with the activities of the Jamaat-e-Islami. The Norway Chess 2026 will begin in Oslo today with round one matches. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo. And that is the end of this news bulletin.
2: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
10: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा।

0: मौसम, भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी, उमरिया में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए उन्होंने यहां सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बन सिंह अमझेरा अंतर सिंह और अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
1: तो माँ वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर।
0: कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण एवं सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। सीहोर के रेहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर जिला स्तरीय संरक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं नीमच, कटनी, खंडवा, खरगोन, अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, श्योपुर और रायसेन में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी पुस्तक अपनापन का विमोचन कल किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों को साझा किया है। इसका विमोचन कल नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा करेंगे।
3: ये पुस्तक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और आदरणीय देवगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री

0: ये सुब्रमण्यम हाल पूसा में करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार से स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब रुक करते हैं मौसम का। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतपा की शुरुआत के पहले ही दिन नर्मदापुरम में असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही तेज और तीखी धूप रही। भोपाल, विदिशा और सीहोर में भी गर्मी से लोग परेशान दिखे। उधर उमरिया जिले में नौतपा की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज से हुई। नौतपा के पहले ही दिन जिले में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में 40 करोड़ की लागत से 3 डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण किया जाएगा। कटनी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। जिला जेल अशोकनगर में आज बंदियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज श्योपुर में श्योपुर जिला स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अधिकारियों और विभागीय निर्माण अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ऐप के जरिए चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। 3 दिन की गिनती में 315 गिद्ध पाए गए। गुना में कलेक्टर ने आज जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकारियों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोग और भोज लोक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मना गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी के जबलपुर से इंद्र से बोल रहे हैं।
0: ग्राम सभा
1: शाम के 7:21 हुए हैं। श्रोता सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सबई किसान भैया भौजी बिन्ना हरन से माधुरी बिन्ना की राम राम। भैया हरो, आज हम चले आ रहे थे तो हम सोच रहे थे अपने भैया हरन की एक छोटी सी परीक्षा लई जाए। वैसे तो हमारे भैया हरन हर परीक्षा में पास हो जाते हैं। हम कछु पूछे हैं हमारे भैया हरन के पास में उत्तर रहे थे, अभी चिट्ठियन के द्वारा बता देते हैं अपनों उत्तर। लेकिन हम सोच रहे थे कि आज हो सकत क्यों ना याद ना हो, या हो सकत

कि आज अपन ने जो मनाओ है हमारे मध्य प्रदेश में मनाओ हो, उत्तर प्रदेश में मनाओ हो, तो हो सकत है कि वे उनमें शामिल ना भाई हों, ऐसी कछु चीज़ें हो सकती हैं। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम कछु दो लाइनें गुनगुनाएं और आप बताओ कि आज का हतो, तो हम गुनगुना रहे और आप सोचो कि खट खट खट खट तेगा बोले, अरे खट खट खट खट तेगा बोले, रण में छपक छपक तलवार, सन सन सन सन गोली बरसे, ठन ठन भालन की झनकार, कटभुज दंड गए छत्री के, अरे कटभुज दंड गए छत्री के, जूझे बड़े बड़े सरदार, कट कट सिर धरती पे गिर गए, अरे कट कट सिर धरती पे गिर गए, सबका छूट गयो अभिमान, जा दिन जन्म भयो आला को, धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो भैया समझ गए ना कि आज कौन सा दिन है, आज है आला जयंती और आज है 25 मई। हर 25 मई को आला जयंती हमारे भैया बहन नहारे अपने बुंदेलखंड में मनाते हैं। और भैया अपने बुंदेलखंड की तो बात ही अलग है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भरपूर आला जयंती मनाई जात है। और इको कारण जो है कि जोन अपने आला और उदल हते, आला बड़े भैया हते और उदल छोटे भैया हते, जो कि महोबा के राजा परमाल देव चंदेल के ते चंद सेनापति के रूप में काम करत हती। और भैया इनने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी उसके बावजूद भी कभी हार नहीं मानी है। इनने कहो जात है कि इनने 52 युद्ध लड़े हती और 52 युद्ध में जे कभी पराजित नहीं भैया। ऐसे उत पे जहाँ पे भी है ना, जब अपने बुंदेलखंड में इनकी बात चलत है तो आल्हा खंड गाओ जात है। और जो उत के जो राज कवि हते जगनिक उनने लिखुआ तो, और इन और आला खंड में जब भी गान होत है, आला खंड सुनाओ जात है, तो इनके युद्ध के बारे में, इनकी वीरता के बारे में ही गुणगान करो जात है। और जब जब हम जो सुनत है ना आला खंड, तो जो को भी सुने वो उके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनो सुंदर इतने अच्छी तरीके से लिखो गए है। और आज तो उनकी जयंती है, तो ढोल मजीरों के थाप के साथ में अच्छी बढ़िया है ना जयंती मनाई गई। और उनकी जो फोटो है और जितने उनकी मूर्तियां हैं उनको बढ़िया सजाओ गो और माला पहनाई गई। और साथ साथ में उत के लोगन ने आला खंड गाए, बाल बच्चन ने सब ने सुने और बहुत खुश भए। तो भैया हरो इसे जय अपन जयंती जितनी भी मनाते हैं और भाई इनकी आला और उदल की अपन जब जयंती मनाते हैं, तो इको कारण ही जो है कि हमारे ते जो हमारे बुजुर्ग हते वे उन्हें याद करें और जो हमारे बाल बच्चा हैं उन्हें समझें कि मातृभूमि को प्रेम कैसे होत है। और मातृभूमि की प्रेम से ओतप्रोत हो गए हमारे बाल बच्चा इन सब चीज़न को देखते हैं समझते हैं और उनके बलिदान को उनके त्याग को समझते हैं। तो भैया इन सब चीज़ों को हमेशा मनाओ जात रहो चाहिए। और यही के साथ में हम तो जो कहते हैं कि देखो अब तो अपन ने आला की बात करी, आला जयंती की बात करी, अगर हम आला ना सुनवाएं तो फिर क्या हो बिन्ना, अरे बात तो तुमने कर ली लेकिन कछु सुनवाओ तो है ही नहीं। तो हम बिल्कुल देर नहीं कर रहे और आप हो सुनवा रहे आला रघुवर दास अहिरवार को गाओ भाऊ।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: हाँ तो भैया आरो, अब हम जा सोच रहे हैं कि हमारे भैया हरे हमेशा सोचत रहते हैं कि आज सोमवार है और सोमवार को हमारे भैया हनन को इंतजार रहते है। कब आप पूछ रही हो कि भैया बिना आप तो हमेशा आती हो, कछु ना कछु हमसे पूछती जा रही है। अरे बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं भैया कि कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के अंतर्गत हमेशा उनको जो लगू रहे थे हमारे भैया हरण को कि आज कौन सी जानकारी दी जा रही है, आज कौन सी बड़ी नई नई बातें बताई जा रही हैं। तो भैया नए जमानों हैं, नई बातें हैं, तो नई बात ही है हम आज हमारी जानकारी में कि कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को महत्व, और जो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह। तो हम भी सुने और आप भी सुने ध्यान से।
3: सभी किसान भाइयों का मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, एक बार पुनः हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो विषय आज के समय तकनीक से जुड़ा हुआ है, विशेषकर सूचना की तकनीक से। आज हम चर्चा करेंगे कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व एवं इसकी उपयोगिता। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने के लिए कृषि प्रसार के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, जो कि वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में पदस्थ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह आप उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद डॉक्टर साहब, सभी किसान भाइयों को डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी की तरफ से नमस्कार।
3: तो डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो ये बताइए कि सूचना, खास करके कृषि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है?
4: जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी हमेशा सुनते हैं और जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या चीज़ है, और आज का जो वर्तमान समय है वह सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना तंत्र, यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से

आदान प्रदान किया जाता है। इसको हम दोहरा प्रवाह भी कहते हैं, यानी एक व्यक्ति जो सूचना को देता है दूसरा व्यक्ति उस सूचना को प्राप्त करता है। और इसको व्यक्त करने के वैसे तो जनरली दो तरीके हैं, एक लिखित रूप में आप अपनी सूचना को देते हैं, दूसरा अमौखिक तरीके यानी बॉडी लैंग्वेज से किया

0: अब सूचना प्रौद्योगिकी की बात आपने बतलाई, अब कृषि में इसका क्या महत्व है?
1: डॉक्टर साहब, वर्तमान कृषि तकनीकों का विस्तार आप देख रहे हैं कि जिले में जो कार्यरत हमारे विस्तार अधिकारी हैं या प्रसार कार्यकर्ता हैं, इन पर निर्भर है। परंतु आज जो हमारी वर्तमान स्थिति में परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार है कि एक प्रसार कार्यकर्ता के ऊपर 5,000 से 7,000 तक कृषक का दायित्व आता है। ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से कृषि को समुचित तरीके से पहुंचाना ये असंभव हो रहा है। इसीलिए इसको सही तरीके से पहुंचाने के लिए, सूचना का सही लाभ देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पे जाना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता आज की है वर्तमान समय में।
0: डॉक्टर साहब, इसके महत्व को हम कैसे प्रतिपादित करें?
1: जैसा कि हमने अभी कहा कि आज का जो सूचना तंत्र का जाल है, यह शहरों से लेकर के सुदूर गाँव तक कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल माध्यमों से पहुंच चुका है। पहले की तुलना में युवाओं की जो रुचि है वह खेती में बढ़ी है। ऐसे में यदि खेती की नवीन तकनीकी प्रचार प्रसार में जो विभिन्न हमारी नई सूचना प्रौद्योगिकी का जो समावेश हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, निश्चित ही ये खेती के उद्देश्य को अच्छा करेगा और खेती में लाभ को बढ़ाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सन 2022 तक जो हमारा प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि कैसे हम इनकम को डबल करें, तो अगर 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना है तो निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर हमें विशेष बल देने की आवश्यकता है। और इनमें जो भी हमारी तकनीकी किसानों को पहुंचाई जा रही है उनको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगर हम पहुंचाएं तो किसानों को लाभ भी होगा और उन्हें सही समय पे सूचना प्राप्त होगी।
0: डॉक्टर साहब, इसके अलावा अपन ये जानना चाहेंगे कि सूचना तंत्र का उपयोग किसान, जब खेती की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं, तो इस पूरे तंत्र का खेती में किसान कैसे प्रायोगिक ढंग से उपयोग कर सकता है?
1: डॉक्टर साहब, अगर हम प्रचलित जो प्रसार विधियां अभी तक चली आ रही हैं, जिनको हम जैसे समाचार पत्र बोलते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या जो हमारा एक्सटेंशन बुलेटिन होता है, जो प्रकाशन होता है जिसमें पंपलेट है, बुकलेट है, बुलेटिन है, इनके माध्यम से अभी तक हमने जो तकनीकी को पहुंचाने का प्रयास हम लोग करते थे। लेकिन आज जब, जैसा कि 21वीं सदी की बात हम जब कर रहे हैं, तो आज का युग कंप्यूटर का युग है और इस कारण सूचना क्रांति यानी डिजिटल युग का ये सूत्रपात अभी हुआ है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, आरनेट, सॉफ्टवेयर, टैबलेट, वेबसाइट, वेब पेज, मोबाइल मैसेजेस, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना करके, इन अनेक तरीके ऐसे हैं जिनसे कि हम किसानों को जोड़ सकते हैं और जो नई कृषि तकनीकी है उनका प्रचार प्रसार आसानी से समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता किसानों की है वो ये है कि समय पे सूचना मिलना, किसान को सही समय पे सूचना मिले, इसके लिए जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तंत्र, नवीन सूचना तंत्र है, ये बहुत उपयोगी है।
0: डॉक्टर साहब, आपने कंप्यूटर की बात की, तो कंप्यूटर के माध्यम से कृषि सूचनाओं का फैलाव विशेषकर ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों तक किस प्रकार किया जा सकता है?
1: डॉक्टर साहब, भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारी जो गैर शासकीय संगठन है जिसको हम एनजीओ कहते हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे विलेज नॉलेज सेंटर यानी जिनको हम गाँव में कृषि ज्ञान का फैलाव के सेंटर के रूप में जानते हैं, स्थापित करके किया जा सकता है। उसमें ध्यान रखना है कि इसमें सरल व सहज भाषा का उपयोग हो, खेतीबाड़ी व इनसे जुड़े जो व्यवसाय की जानकारी हो, ग्रामीण जनों द्वारा जो भी समस्याएं हो उनका समाधान इसमें किया जाना चाहिए। और इसमें सबसे प्रमुख जो है हमारा आता है वो है, आप लोग सुने हुए कियोस्क का नाम जानते हैं आप, कियोस्क एक एक मशीन है जिसे गांव में या कहीं भी स्थापित कर खेतीबाड़ी की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसे हम खेती का एटीएम भी कह सकते हैं। इसमें किसान जाता है और जो भी अपनी उसकी लोकल भाषा होती है उस लोकल भाषा में उसको जानकारी उपलब्ध हो जाती है, चाहे उसको बोनी की जानकारी चाहिए, चाहे उसको बीज की जानकारी चाहिए, चाहे उसको बीमारी की जानकारी चाहिए।
0: डॉक्टर सिंह, हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा भारतवर्ष मोबाइल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल हर किसान, हर ग्रामीण के पास आज उपलब्ध है, तो मोबाइल का उपयोग इस कृषि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के लिए या फैलाव के लिए कैसे किया जा सकता है?
1: डॉक्टर साहब, आज हम सभी जानते हैं कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे देश है जिसमें कि मोबाइल यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर मोबाइल हमारा युवा यूज़ करता है। और वर्तमान में अगर समय की बात करें परिवेश में, तो ग्रामीण परिवेश में भी सभी के पास आजकल मोबाइल है, हर किसान के पास है, युवाओं के पास है। अगर हम कहें कि यह मोबाइल क्रांति का युग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और मोबाइल का उपयोग कृषि तकनीकी के संचार में तेजी से बढ़ा भी है, क्योंकि मोबाइल को आसानी से कहीं भी लेकर मतलब जाया जा सकता है। कुछ प्रमुख संस्थाएँ एवं जो हमारी तकनीकों का जिक्र करेंगे, जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से किसानों को कृषि तकनीकी से

0: जोड़ने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और मोबाइल की जहाँ तक उपयोग करने की बात करें, इसमें हम व्हाट्सएप के माध्यम से हम समूह बना करके उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना करके किसानों को जोड़ सकते हैं, मोबाइल मैसेज से जोड़ सकते हैं, मोबाइल से बात करके जोड़ सकते हैं। और इनमें अगर हम कुछ प्रमुख हमारे जो संस्थान जो काम कर रहे हैं उन मोबाइल के ऊपर, किसान कॉल सेंटर भारत सरकार ने 2004 में किसान कॉल सेंटर कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो शुभारम्भ किया, और ये बहुत ही अच्छा तकनीक है। इसमें किसान फोन करता है, उसकी सारी समस्याएं उसको निदान होती है। इस तरह मोबाइल मैसेज, जैसा हमने कहा, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मोबाइल एडवाइजरी जारी की जाती है। इफ्को किसान सेंटर के माध्यम से, कॉल सेंटर जो है उसके माध्यम से भी हम मैसेज भेजते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मोबाइल एप्लीकेशन जिन्हें कि मोबाइल एप्स भी कहा जाता है और आजकल हमारे किसान भाई और ग्रामीण जन भी इससे परिचित हैं, तो क्या ऐसे कुछ मोबाइल एप्स हैं जो विशेषकर कृषि सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य कर रहे हों?
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे मोबाइल की जब बात की, तो हमारा जो मोबाइल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए जो घटक है वो यही है, मोबाइल ऐप। बहुत सारे मोबाइल ऐप आए हुए हैं बाजार में हैं, जिसको हम अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड हमारे किसान भाई करके और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रमुख ऐप में बता दें, किसान सुविधा है, इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में लॉन्च किया था। इसी तरह पूसा कृषि भी मोबाइल एक ऐप है, जिसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी 2016 में लॉन्च किया था। इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस की कोई समस्या हो तो क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, एग्री मार्केट के बारे में आपका स्प्रे गाइड है, उसका ऐप है। इफ्को किसान ऐप है, एजी मोबाइल ऐप है, मशीनरी गाइड ऐप है, और कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने भी कई ऐप डाउनलोड खेती के ऊपर किया, जैसे चना की उन्नत खेती है, लहसुन की खेती है। तो निश्चित रूप से मोबाइल ऐप का उपयोग किसान के लिए बहुत ही उपयोगी आज के समय में हो सकता है और इससे वो सूचना प्राप्त कर सकता है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कृषि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में दी और सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का कृषि की दृष्टि से क्या महत्व है, कंप्यूटर, मोबाइल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, इन सब तकनीकों का, इन सब संचार माध्यमों का उपयोग कर हमारे किसान भाई नवीनतम कृषि तकनीक का लाभ अर्जित कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं किसान भाइयों, आप सभी ने सूचना प्रौद्योगिकी और विशेषकर कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है और क्या उपयोगिता है, इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: हाँ तो भैया हरो, हम बता रहे थे कि देखो आज तो आला जयंती रही, आला जयंती में हम और गए थे और हमारे जन भैया के मोड़ा मोड़ी है, बोलन लगी बुआ हम सोई चंगे चंगले। हमने कि भैया चलो जरो तुम्हारे को तो चल वो बहुत जरूरी है, तुम्हारे देखो सुनो समझो तो भाई तो बात बने। सो भैया ने चल दाई, अब चला चलत भैया हमारे यहाँ आए तो देखो कि बढ़िया शंकर भगवान को अच्छो मंदिर उतनी रास्ता में मिलो। सो हमारे मोड़ा मोड़ी कहने लगे कि अरे बुआ ते सोई चलो भगवान की बहुत दिनन से दर्शन नहीं करी। हमने कही जा बात तुमने बेकोंदा करी, आज सोमवार को दिना भी है, भोले भंडारी को अच्छो मंदिर भी मिल गओ तो तनक देर अच्छी दर्शन कर लें आराधना कर लें और तुम्हें तनक बुद्धि आ जाए। सो कहें सो गुस्सा होने लगे, बोले अरे बुआ तुम तो ऐसी बातें करती। हमने कहो और का, दिन भर मोबाइल हाथ में लें रात है यही तो हम देखते रहते हैं, चलो तुमने जा कही है तो पहले दर्शन कर लें और तनक भगवान की आराधना स्तुति कर ले। सो बोले कि ठीक है। तो भैया उतर

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: हाँ तो भैया आरो, आ हमारे भैया महादेव के मंदिर से उतर के आए और हमने देखो कि जो हमारे भैया के मोड़ा मोड़ी हैं पिंटू और है ना रमा। अब बात भैया देखे हाथ में दो इन के हाथ में मोबाइल और है ना तनक दूर चलवे के बाद अब पिंटू तो कहे ढिचू ढिचू ढिचू, अरे हमने कही जो का करण लगे तुम। हमने देखो भैया कि वे तो है ना मोबाइल में कोई खेल रहे चु गेम और ऊपर से मुंह से चल रहा है ढिचू ढिचू। सो हमने कही कि जो का कर रहा है, सो बोले बुआ भी मैं गेम खेल रहा है और मोड़ी है, सो मोड़ी है ना गेम खेल रही। सो हमने कही कि जा बात तो भाई बहुत गलत है, तुम्हारे दिन भर है ना मोबाइल में घुसे रहे थे, अब तुम्हारी ये आँखें देखो आँखन में चश्मा लग गए है और ऐसी धीरे धीरे करके तुम्हारी पीठ भी टेढ़ी हो जाए, ऐसे झुके झुके हमेशा चला थो, झुके झुके है ना बैठा थो, झुके झुके खाना खा थो, तो तुम्हारा तो सभी काम गड़बड़ भाव जा रहा हो। अरे कहीं बुढ़ापो थोड़ी ना आ रहा है, अभी तो तुम्हारे बच्चा हो बड़े हुई हो तब जाके है ना कहने लगा कि आदमी बुढ़ापो आते जबानी आ तुके बुढ़ापो तुम्हारे तो वहीं से ऐसे ऐसे हाल हो रहे हैं कि तुम्हारी आँखन में चश्मा लग गया, पीठ तुम्हारी झुक गई है और तुम दिन भर है ना मोबाइल में बैठे रहे। सो बोलने लगे कि बुआ तो फिर हमने कि देखो तनक दूर चले सो मोड़ा, हमने देखो कि अच्छो ग्राउंड हमारे गाँव में और उतने मोड़ा मोड़ी अच्छी बॉल लें और घूम रहे हैं और खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। सो हमने कही देखो कितने अच्छे मोड़ा मोड़ी हैं, कितने अच्छे बॉल खेल रहे हैं और आज पता है विश्व फुटबॉल दिवस है।

और ई को कारण जो है कि जितना आजकल बाल बच्चन को खूब है ना सिखाओ जा रहा है, तरह तरह के खेल सिखाए जा रहे हैं, फुटबॉल सिखाई जा रही है। और फुटबॉल से खेलवे से अपन हो पता का होते हैं, सो बोलने लगे का होते हैं हमने कि पहली बात तो अपन सबके साथ में खेलत हैं तो हंसी तो अपने आप आते हैं, और दूसरी बात जब अपन दौड़ते हैं तो अपना शरीर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होते हैं, और तीसरी बात जब अपन सब इतने सारे बाल बच्चन के संग मिलत हैं जुलत हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होत, और हम सामूहिक रूप से सब एक दूसरे से मिलत हैं तो उनकी भावनाओं को समझते हैं, संगठन को समझते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। तो खेल कूद को बड़ो महत्व है। और तो और अब जैसे मान लो अभी जा टीम खेल रही है, कल के दिन है ना गांव दूसरे गांव की टीम आए, वे दो ही जने खेल हैं, कोई जीत हुई है कोई की हार हुई है, और जब जीत और हार हम दो ही चीजन को समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में जो भी अपने जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जीत भी और हार भी उन्हें हम आराम से आत्मसात कर लेते हैं, मतलब उन्हें हम आराम से झेल लेते हैं, हमें घबराहट नहीं होता, हमें डर नहीं होता, हमें तरह तरह के मन में विचार नहीं आते, तो ये सब चीज़ें हैं ना हमें खेल भावना से ही मिलती हैं। और दूसरी बात जब तुम और बड़े हो जाओ राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेल में जे हो तो पता चलो कि अन्य देशन के लोगों से मिल हो जुल हो, उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति देश विदेश सब कछु देखो तो उसे तुम्हारो ज्ञान और बढ़े। और तुम्हें समझ में आया कि अकातनिया कूप मंडूक बने फिर रहे हैं कि भैया कुआ के मेंढक हैं अपन उतई देख रहे हैं कि यही संसार है, जब अपन आगे बढ़ते हैं देश में जाते हैं विदेश में जाते हैं तो अपन उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसे हमेशा खेल को बड़ो महत्व है, चाहे आप बहुत बड़ी मात्रा में ना खेलो बड़ी बड़े ऊंचाई पे ना जाओ लेकिन खेल जीवन में जरूर भाव चाहिए। तो तुम्हारे है ना जो मोबाइल वोबाइल छोड़ो और खेल खेलने की कोशिश करो कि तुम उधर जाओ उनके साथ में कहो कि हमें सोई को खेलने फुटबॉल। सो बोलने लगी ठीक है बुआ। सो भैया बे तो चले गए, हाँ अपना मोबाइल दे के बोले कि ठीक है बुआ तुम कह रही हो तो हम रोज़ खेल भी आए। सो हमने कहा चलो ठीक है। सो भैया बे तो खेल भी चले गए हैं और हम सोच रहे हैं कि तनक हम सो एक लोकगीत सुन लें रे बारा विश्वकर्मा भैया को।

जो अपन ने उन्दा सो लोक गीत सुनो जिन्हें गाओ तो रेवाराम विश्वकर्मा भैया ने। और देखो भैया अब हो रही चलवे की बिरिया, तो ले थे विदा सबई बिन्ना भौजी भैया हरन से माधुरी बिन्ना की। राम राम, जय जवान जय किसान।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के ठीक 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में सुर्खियों में हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत अमेरिका संबंधों को नई मजबूती पर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। पिनाक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: पिनाक जी। एक बेहद अहम दौरा है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में, और भारत अमेरिकी संबंधों को नई मजबूती देने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के शब्द सुने।
4: I think where the United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
2: पिनाक जी, एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की तरह ही भारत इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो सर्वोपरि है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
3: देखिए, हर एक देश अपनी जो इंटरेस्ट है उसको सबसे नेचुरली प्रायोरिटी देती है। अब उसमें ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कभी, अच्छा ठीक है आप ये करिए तो हम ये करेंगे। पर जो ट्रंप साहब ने नीति अपनाई है वो थोड़ा सा और पिछले प्रेसिडेंटों से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अमेरिका को क्या फायदा है वो सबसे पहले वो देख रहे हैं। भारत भी हमेशा देखता है कि भारत का क्या फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है, काफी गहराई है, पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल है, पावर इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी सिस्टम अलग है, वो डिफरेंट पीपल हैं, तो इसमें तो होता ही है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ये नॉर्मल होता है। तो इसीलिए हम लोग बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, उसमें से जब कुछ मुद्दा निकलता है इस पे दोनों तरफ राजी होते हैं तब आगे बढ़ती है बात।
2: जी पिनाक जी, आइए सुनते हैं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द।
5: एंड वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट आई एम सो

0: excited about going into the 21st century, given the challenges and the opportunities of this new era, is India. It's one of those countries that I know that we have this very valuable strategic partnership with, and we share so many values and so many common interests. And so, obviously, I try to get around the world. I will try to go to other celebrations of our 250th birthday in different parts of the world, although I doubt any will have a production like this one. But I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly, for the people of other countries working together as well.
1: पिनाकजी मार्को रूबियो ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में रहने वाले लोगों के लिए भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उन सब के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पार्टनरशिप्स अमेरिका की हैं उनमें भारत की पार्टनरशिप को अमेरिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और समझता है कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते वक्त भारत अमेरिका के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस पर?
2: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी हैं, पर उसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग असेस करेंगे, क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे देश को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। अमेरिका तो है ही मिलिट्रली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।
1: पिनाक जी, कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं लेकिन भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया यूएस के रिलेशंस पर पड़ रहा है?
2: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
1: जी,
2: क्योंकि हम लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है, और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो ये है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो, जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त हैं, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं फिर कहते नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीतियों से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं हो।
1: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
2: देखिए वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट, पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है, पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
1: जी।
2: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि

0: हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, वो एक तरफा उन्होंने वो डिसीजन लिया है। इसीलिए भारत भी ईयू के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स जो हैं उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही अब करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है और इंडिया बदल रही है नीति, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स हैं वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है, पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस कि जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी, अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
1: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे?
0: ट्रेड का जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे, और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर देंगे। देखिए, अमरीका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये एक नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा एडवर्स ट्रेड इंबैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं
1: जी,
0: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा, और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है, वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है। और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है, आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया कि वो हम नहीं खोलेंगे, डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसलिए उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते, तो इस पे तो हम अटल रहेंगे मुझे लगता है, पर बाकी जितने भी चीज है उनको दूसरी जगह कंसेशंस दे देंगे। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैठ के कई हो जाता है, फिर कुछ बाकी रह जाता है, तो फिर बाकी चीजों पे जाके चर्चा होती है अंदरूनी भी, फिर बैठकर भी दूसरे मुल्क के साथ जो बैठते हैं उसके भी सब चर्चा होती है, और तब जाके डिसीशन निकलता है, फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, पर एक कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है।
1: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और इसी बीच जो ये एक बदलता विश्व प्रारूप हमारे सामने है और किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए, भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
0: ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कि चीन, भारत और अमेरिका
1: जी,
0: इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं
1: जी,
0: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है
1: बिल्कुल,
0: और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता
1: बिल्कुल,
0: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए, कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम

0: आप दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स बैलेंस है हमारा, हम उतना नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। और आप आज बाजार में देख लीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, कितने भरे हुए हैं। चाइना हमारे यहाँ मोबाइल बनाते हैं, कई चीजें हैं जो उसपे होता है। इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट है, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमरीका से भी आगे चला गया। तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन तो लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
1: बिल्कुल मिनाक साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
0: देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
1: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं रेशमा की आवाज में हीरो फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में इंदिवर की शब्द रचना। इस गीत को संगीतबद्ध किया है संगीतकार श्यामल मित्रा ने। फिल्म का नाम है अमानुष।

श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। यहाँ सुनिए एक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल AWARDS यानी awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा था साहिर ने और धुन थी खयाम की। और फिल्म संगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं द ट्रेन। इस फिल्म का गीत आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

फिल्म संगीत के आखिर में अभी आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं खत्म होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 हुए हैं। कुछ पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
7: Several key agreements were signed.
8: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
7: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
9: Against the assessment of
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
9: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल का

में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार से

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फ़ोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70 पॉइंट औसतम 70.3। इसको सबको नज़र

रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, इन्होंने जब सीनियर सिटीज़न वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज़ में यह

0: वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं
1: जी। ऐसे जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया, और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरेट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से
0: जी। थैंक यू नैना जी। जेरेट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में जैसे आपने मुझसे कहा
1: जी,
0: तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरेट्रिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
1: जी।
0: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लैट्रिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी जी। धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है
1: जी। थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी, थैंक यू कमल कांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112

0: और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने, बहुत ही
0: थैंक यू अरुण पवार जी। मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी। आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएँ हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी।
0: जी इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी,
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, और जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुँच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं, तो उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है। ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो

0: यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मुनाली जी, अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें, तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होकर चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई, और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएँ हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैक एंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट भी कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुज़ुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं हैं और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने ख़ास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीइंग के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के

0: जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान है, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका कोई भी दुविधा है तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
2: जी। और जी मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है इस पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहाँ भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
3: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता देंगे ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 1-4-5-6-7 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी

0: सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं। हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
2: नमस्कार।
1: आपका सवाल।
2: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है पहुंचे।
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं।
1: अगर उनका स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें।
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी। राजेश नेमा जी।
3: जी
1: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी,
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे ज़रूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूँ, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी

देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।

शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आपको पंडित भीमसेन जोशी का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन सुनवा रहे हैं। आपके साथ तबले पर संगीतिकी है नाना मुले ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित भीम सेन जोशी का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कलाकार थे नाना मुले। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त हरीश मेहरा का नमस्कार। श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में आपके फरमाइशी खतों का सिलसिला लगातार आता रहता है और हम आपके फरमाइशी गीतों के जरिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। मन भावन कार्यक्रम में पहला खत भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खान, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। आप सभी सुनना चाहते हैं उमराव जान फिल्म का गीत। आपके साथ पसंद करता आप भी मगर लोड छत्तीसगढ़ से पुन्नू राम साहू राज, तेजस्वी साहू, राजश्री राजवीर साहू। आपने भी फरमाइश हमें लिख भेजी है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से आपका खत हमारे पास आया है। लिखने वाले श्रोता हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले को। सुनने को ख्वाहिशमंद आप भी पुणे से पंकज वड़ोदे, आर्या प्रियंका बीटी वड़ोदे, चंद्रप्रभा वड़ोदे और कोटाबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। लीजिए आप सभी की मिलीजुली फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं उमराव जान फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने, गीत को लिखा है शहरयार ने और धुन बनाई है खयाम ने।

मन भावन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों की मुराद हम पूरी करेंगे इस सूचना के बाद। श्रोताओं सुनिए एक आवश्यक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in, इसे दोबारा सुने awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। और मनभावन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पर आपका पसंदीदा नगमा। ये पसंद आई है छत्तीसगढ़ मेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया और शोएब खान, पुत्रा मुस्तफा खान, राव भाई शहीद शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फरमाइश करता आप भी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदाले और आरती जोंदाले की फरमाइश हमारे पास आई है। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गर्दे, सुभाष गर्दे, दिगंबर गर्दे, राजेश गर्दे, शिवम शुभांक और सृष्टि गर्दे, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभय नंद आर्या और परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। अजनबी फिल्म की फरमाइश आपने हमें लिख भेजी है। जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती ममता और गोमती ने। लीजिए आप सभी की मिलीजुली फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अजनबी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

मन भावन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। कार्यक्रम में अब फरमाइश करता है आप सभी जय नरसिंह देव एफएम रेडियो ग्रुप करकबेल से कमलेश कहार श्रीमती कविता, कल्पना कहार अंकिता, कल्पेश कहार अंकित, वर्षा बादल आकाश, नमन कहार दीपक सोनी, जय हिंद हलवाई शानू भारती अमन और आशीष, ग्राम कह कहा जिला पन्ना से प्रताप सेन सबिता सेन प्रशांत नेहा अम्बेश कृष्णा और प्राची सेन, यंग रेडियो लिसनर जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन महेंद्र जैन सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया, आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। अनुरोध आप सभी ने भी किया है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, आप भी सुनना चाहते हैं चमत्कार फिल्म का गीत, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदोमिका बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक और नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीरा राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन भी सुनना चाहते हैं चमत्कार फिल्म का गीत। लीजिए आप सभी की मिलीजुली पसंद पर मन भावन कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं चमत्कार फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू, अलका याग्निक ने, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और अनु मलिक ने संगीत तैयार किया है।

मन भवन कार्यक्रम में अब फरमाइश आप सबकी हमारे पास आई। लिखने वाले श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौड़ौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, डोंगरगांव जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी है। आप सभी सुनना चाहते हैं विवाह फिल्म का गीत, सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव एलपी रोहित, लल्लू राम पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्परानी। और राजपुर से आपका खत हमारे पास आया है। लिखने वाले श्रोता हैं घिसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भागवान, पुष्पा नेहा, एकता, अस्मिता सौरभ और कुणाल दिलवाले। आदर्श नगर मालौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शैना शर्मा। निवास शर्मा ने भी यही गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। मोटका माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किसान श्रोता जो है वो हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल के साथ है मन पटेल। लीजिए आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं मन भावन कार्यक्रम में विवाह फिल्म का गीत। उदित नारायण, श्रेया घोषाल की आवाज़ है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

इसी गीत की फरमाइश आपने भी लिख भेजी थी अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लब्बी श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजिम से ये खत हमारे पास आया था, इसी गीत की फरमाइश इसमें लिखी थी अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। जी सब स्टेट परे लाइन जबलपुर से यह खत आया है हमारे पास। लिखने वाले श्रोता हैं सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा, सुदेशना राजपूत। लीजिए आप सभी की मिलीजुली फरमाइश पर मनभावन कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने आपको सुनवाया विवाह फिल्म से। अब आपके दोस्त हरीश मेहरा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन